FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून 2026। इस स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 24 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

FM 103 MHz पर हम आकाश वाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आइए हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हमारे दिल्ली के दर से भी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। अब पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। शुष्क खेतों में जल संरक्षण, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं प्रतिमा वर्मा।
3: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण की। जल न केवल फसलों बल्कि सभी जीवों के लिए नितांत आवश्यक है, बल्कि पौधे की कई जैव रासायनिक क्रियाओं में भी जल भाग लेता है। इसके अभाव में पौधे पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यह एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका उपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से करने की आवश्यकता है। जल की सीमित उपलब्धता के कारण इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। पानी की कमी से फसल उत्पादन में भी गिरावट आती है। पानी का सही ढंग से उपयोग कर इसकी कमी से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन में उचित तरीकों से जल का प्रबंधन किया जाए तो इन क्षेत्रों से सिंचित क्षेत्रों के समान उत्पादन प्राप्त कर खाद्य उत्पादन को अधिक बढ़ाया जा सकता है। अतः वर्षा आधारित क्षेत्रों पर कृषि विकास करने के लिए आवश्यक है कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए जिनसे कि इन क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की जल उपयोग क्षमता को बढ़ाया जा सके। इससे वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता होने पर भी फसल को जल की कमी से बचाया जा सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि उत्पादन को बढ़ते क्रम में बनाए रखने के लिए जल संरक्षण के उपायों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस समय जल की बढ़ती मांग की पूर्ति करने का एकमात्र उपाय उपलब्ध जल का लंबे समय तक संरक्षण करना है। किसान भाइयों, मृदा प्रबंधन कर जल को संरक्षित किया जा सकता है। शुष्क क्षेत्र में वर्षा की मात्रा और वर्षा समय दोनों अल्प होते हैं। मृदा का इस प्रकार प्रबंधन किया जाना चाहिए कि मृदा में जल की उपलब्धता पौधों के लिए अधिक समय तक बनी रहे। उचित भूमि प्रबंधन द्वारा वर्षा जल को काफी मात्रा में संचय किया जा सकता है। 2 से 3 वर्ष के अंतराल पर गहरी जुताई और वर्षा से पहले गर्मी में जुताई कर दी जाए तो भूमि अधिक मात्रा में पानी सोखती है। जुताई खेत के ढलान के समकोण पर करके जल बहाव में अवरोध उत्पन्न कर गति को कम कर सकते हैं। समुच्च जुताई के माध्यम से भी आप जल को अनावश्यक बर्बाद होने से बचा सकते हैं। वर्षा जल जब मृदा की सतह पर संतृप्त होने के बाद जल अपवाह के रूप में ढलान के अनुरूप बहता है तब ढलान के समानांतर जुताई कर जल अपवाह को कम कर सकते हैं। इस प्रकार मिट्टी के द्वारा जल का अधिक अवशोषण किया जाता है और यह मिट्टी में नमी के रूप में बना रहता है। किसान भाइयों, खेतों में गहरी जुताई भी आवश्यक है। आगामी फसल की बुआई करने से पहले खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके वर्षा जल मृदा द्वारा पर्याप्त मात्रा में अवशोषित कर लिया जाता है। इससे आगामी फसल के जल भाग की पूर्ति की जा सकती है। मानसून पूर्व खेत के चारों तरफ से मेड़बंदी और जुताई कर जल संरक्षण किया जा सकता है। असिंचित क्षेत्र की फसल वर्षा के जल पर ही आश्रित होती है, इसलिए यह फसल के लिए अमृत के समान होता है। किसान भाइयों, इसके साथ ही जल उपयोग में दक्षता बढ़ाने की जरूरत है। मेड़बंदी से वर्षा का जल अधिक समय तक मृदा सतह पर डूबने से पर्याप्त मात्रा में मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इससे फसलों द्वारा अधिक समय तक जल की पूर्ति की जा सकती है। इसके साथ ही किसान भाइयों, ढाल के समकोण में जुताई भी अति आवश्यक है। खेत में ढाल का प्रतिशत अधिक है तो ढाल के समकोण में जुताई करके जल के बहाव का नियंत्रण कर सकते हैं। इससे वर्षा का जल खेत में अधिक गहराई तक अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार नालियों का पानी खेत में अधिक समय तक ठहरेगा, इससे भूमि में जल

0: की प्रतिशत मात्रा में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, फसल उत्पादन के लिए शुष्क क्षेत्रों में ऐसी सस्यन की विधियां और फसलों के समावेश को बढ़ाने की आवश्यकता है जो वर्षा द्वारा प्राप्त जल में भरपूर उत्पादन देने में सफल हो। फसलों का चयन क्षेत्र की मिट्टी के प्रकार और उर्वरता के अनुरूप होना चाहिए। इससे शुष्क दशा में फसल पौध अपना जीवन काल बिना जल की कमी के पूर्ण कर सकेगा। किसान भाइयों, शुष्क क्षेत्र में फसलों का चयन काफी मायने रखता है। वर्षा जल की कमी के कारण शुष्क क्षेत्र पर फसल उत्पादन में कमी फसल आधारित भी होती है। इन क्षेत्रों में सामान्यतः मक्का, ज्वार, अरहर, बाजरा, कपास जैसी फसल उगाकर अधिक जल मांग वाली फसलों की अपेक्षा अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी फसलें अपने गहरे और विस्तृत जड़ संरचना के कारण जल का उपयोग विपरीत परिस्थिति में भी कर पाने में सफल होती है। किसान भाइयों, इसके साथ ही फसल चक्र, जैविक खेती और मिश्रित खेती को अपनाकर शुष्क क्षेत्र में उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें बस यहीं तक। दीजिए अब हमें आज्ञा। नमस्कार।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रतिभा वर्मा को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यही समाप्त होता है। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 180।
2: एपिसोड 180 180।

श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरा पान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में यह आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल होते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा, शोक में डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीदास रचित सृजामचरित मानस गान। समय हो चुका है चिंतन कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अनुपमा तिवारी को। चिंतन का विषय है अहंकार।

अहंकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में अहम अर्थात मैं से हुई है। मैं में केंद्रित होने वाला व्यक्ति अहंकार रूपी रोगों से ग्रसित हो जाता है। छोटा सा बच्चा जब वह जन्म लेता है तो उसके भीतर किसी तरह का कोई भी अहंकार नहीं होता, निश्चल होता है उसका मन। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह बड़ा होता है, उसके अंदर भी प्रतिस्पर्धा का भाव जगने लगता है, कुछ अलग करने की, दूसरों से अलग दिखने की, और धीरे धीरे उसके अंदर भी अपने भाई बहनों के प्रति प्रतिस्पर्धा के भाव आ जाते हैं, यानी उसके अंदर भी अहंकार का बीज पनपने लगता है। शुरू में तो यह भाव आवेग हमारे वश में होता है, पर समय बीतने पर यह इतना बलशाली हो जाता है कि हम उसके अधीन हो जाते हैं। हमारे सारे कार्यकलाप ही अहंकार पूर्ति से प्रेरित होने लगते हैं। अहंकार वह पात्र बन जाता है जो कभी भी भरने का नाम ही नहीं लेता। धन, पद, प्रतिष्ठा, यश पाकर भी हम हमेशा अतृप्त रह जाते हैं। जीवन उस मरुस्थल की तरह, रेगिस्तान की तरह बन जाता है जिसमें अहंकार तृप्ति की प्यास मृग तृष्णा की जैसे बन जाती है। अहंकार से मानव रोगों से ग्रसित होने लगता है। अहंकार के बलवती होने से जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण और जटिल हो जाता है। अहंकार के मद में हम और अधिक गहरे डूबते चले जाते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, ये सब लक्षण उभरने लगते हैं जो अहंकार के कारण होते हैं। अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ पाना आसान नहीं है। उसके लिए सबसे पहले मन में नम्रता, समर्पण और त्याग को अपनाना होगा, और जब हम इसे अपनाएंगे तभी हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा। क्योंकि यह अहंकार हमारे मन मस्तिष्क में छुपा हुआ होता है, इसलिए हमें अपने मन मस्तिष्क को साफ रखना होगा, किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं पालना होगा, तभी जाकर हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा। अहंकार से छुटकारा पाने के लिए हम अपने इस सुंदर शरीर से, जो कि सांसारिक है, और ये पद प्रतिष्ठा जो कि क्षण भंगुर है, इससे हम बच कर रहें। यानी जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि ये सब तो बस दिखावे के लिए ही है, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं पनप पाएगा। अंतर मन की आत्मा से जो व्यक्ति जुड़ जाता है उसके अंदर अहंकार नहीं जम हो पाता है। अहंकार का अंधेरा अपने आप छटने लगता है यदि हम उस प्रकाश को महसूस कर लें, लोगों के प्रति ईर्ष्या को दूर कर दें, सभी को अपना समझें, तब जाकर हमारे अंदर का अहंकार मिटने लगता है। इसलिए अपने अंदर के अहंकार को मिटाने के लिए हमें समभाव की नीति अपनानी होगी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई धनी नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सभी समान हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य यात्रा में वो लगे हुए हैं। और जब हम ऐसा सोच पाएंगे तो हम अहंकार से रहित हो जाएंगे।

चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे निर्मला तिवारी को। इसके साथ ही आज का चिंतन कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। समय हो चुका है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना का। इस कार्यक्रम में ये सुनते हैं अनुराधा पौडवाल को।

आराधना कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को। इसके साथ ही आराधना कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। अब समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं भेंट वार्ता, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग। वार्ताकार हैं राजीव शरण, योग शिक्षक।

तो इनको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई इंजन जब नया होता है, जब हम कोई एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो एक लीटर में वो 10 लीटर देता है माइलेज 10 किलोमीटर का, फिर जैसे जैसे पुराना होता है कम देने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से शरीर के अंदर भी वो हमारी अस्थियों में, मांसपेशियों में, हमारी कोशिकाओं में, हमारे सेल्स में, सेल्स का डिग्रेडेशन होते जाता है। और फिर जितना उनका फॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे जितना सेल टूटता है उतना सेल बनना चाहिए। हड्डियों की समस्या क्या होती है, हड्डी अब बड़े होने पे क्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिम्यूटेड आर्थराइटिस, ये खास करके ये कुछ बुजुर्गों की बीमारी है, वरिष्ठ नागरिकों की बीमारी है, गठिए का रोग, हाथों की उंगलियों का टेढ़ा हो जाना, हड्डी बढ़ जाना, हड्डी घिस जाना, जोड़ों का दर्द हो जाना, ये बुढ़ापे का एक बीमारी हो गया है। तो उसके लिए अब उसके लिए समझना क्या है कि दो प्रकार के सेल होते हैं हमारे शरीर के भीतर, ऑटोप्लास्ट सेल जो कि शरीर के भीतर अस्थियों का निर्माण करती है, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो कि अस्थियों का क्षय करती है। अर्थात हमारे शरीर के भीतर अस्थियों का निर्माण और क्षय, वैसे ही रक्त का निर्माण और क्षय, ये सब मांसपेशियों का निर्माण और क्षय, सेल्स का निर्माण और क्षय, ये नित्य की प्रक्रिया है, ये हमेशा घटित होते रहती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो जब ऑटोप्लास्ट सेल और ऑटोक्लास्ट सेल का बैलेंस बिगड़ता है, अब माना कि ऑटोप्लास्ट सेल ठीक है और क्लास्ट सेल

कुछ व्यायाम हाथों पैरों के लिए, जो हमने कहा कि पैर को सामने खोल के कूल्हों से पैरों को हिला लें, फिर घुटनों से पैरों को थोड़ा ढीला कर लें, फिर पैर की 10 उंगलियों को आगे से मोड़ लें। अगर स्वतः अपने उंगलियां नहीं मुड़ रही हैं तो एक पैर को, माना कि बाएं पैर को दाएं पैर की जंघा पर रख लिया और अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजों को पकड़ लिया और उसको थोड़ा घुमा लेंगे, थोड़ा मोड़ लेंगे, थोड़ा मोड़ते रहेंगे, तो उससे अपने ही हाथों का सहारा देके हम अपने पैर की उंगलियों को ठीक रख सकते हैं। अब माना कि आपकी एड़ी भी नहीं घूम रही है, जाम हो गया है, बुढ़ापे में करने चले हैं तो वो थोड़ी ढीला ढाला नहीं हुआ है, तो क्या कर लेंगे, दाएं पैर पे ही बाएं पैर को रख के जंघा पे और हाथों के पंजों से पैर के पंजों को पकड़ के एड़ियों को गोल गोल घुमा लेंगे, थोड़ा क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे अपने सहारा खुद बनना है। जो हमारे बुजुर्ग भाई हैं, प्रायः जब हम बड़ी दुख के साथ कहना होता है कि जब हमारे बुजुर्ग जब तक क्रियाशील रहते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो शायद हम अपनी एक जिम्मेवारी समझ के थोड़ा उनका निर्वहन करते हैं, फिर उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। हम उनको सुविधाएं तो बहुत दे सकते हैं, उनको एसी हॉस्पिटल में डाल सकते हैं, परंतु उनकी परेशानियों को कम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों से खास आग्रह है कि आपको अपना सहारा खुद बनना है और आज भी किसी को सहारा देने के लिए ही तैयार रहना है, न कि दूसरों से सहारा लेने के लिए। इसके लिए आवश्यक है आप अपने पे ध्यान दें और हल्का सुपाच्य भोजन लें, संभव हो तो यदि पूर्व से मांसाहारी हो तो शाकाहारी हो जाएं, क्योंकि अब पेट में पचाने की क्षमता आपकी पहले वाली नहीं रह गई, दांत भी वैसे नहीं रह गए, तो शरीर की प्रकृति के अनुसार आप अपने थोड़े बहुत आहार में परिवर्तन करें, थोड़े व्यवहार में परिवर्तन करें, चाय के स्थान पर अदरक का, अजवाइन का, तुलसी का, काली मिर्च का, लौंग आदि का काढ़ा का सेवन करें, गिलोय का सेवन करें, जिनको चाय पीने की आदत हो चाय छोड़ दें। वरिष्ठ नागरिक क्या पिए, अजवाइन का काढ़ा पिए, अजवाइन का काढ़ा पिएंगे आप, आपका पेट कभी खराब नहीं होगा, जो खाएंगे वो पचेगा। तुलसी का सेवन करें, तुलसी हमारा ऑक्सीडेंट है, तुलसी से रोगों की लड़ने की क्षमता, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। घर में काली मिर्च होगी, लौंग, जिनको कफ की शिकायत रहती है तो वो लौंग का सेवन ज्यादा करें तो उससे उनकी कफ ढीली होती है। यानी आपको इस अवस्था में कम से कम अपनी शरीर की प्रकृति, शरीर की प्रकृति का मतलब हुआ कि आपका शरीर कफ से प्रभावित होता है कि पित्त से प्रभावित होता है कि वायु से प्रभावित होता है, आपको समझना है और उसके अनुरूप उसका व्यवहार करना है। हर एक व्यक्ति मूल रूप तीन ही रूप से ग्रसित होता है, कफ पित्त और वायु, ये तीन ही मूल दोष होते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कफ पंगु पित्त पंगु वायु समवाहकम, वायु कफ और पित्त को यहां वहां लेके जाती है जो कि अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाती है। तो वायु ही सबसे बड़ा दोष भी है और वायु ही सभी दोषों का निवारण भी है। इसलिए ये विशेष आग्रह हमारा वरिष्ठ नागरिकों से, आप खुद भी स्वस्थ रहें, अपने लिए भी उपयोगी रहें, परिवार के लिए भी उपयोगी रहें, योगी बने, निरोगी बने और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार।

शरीर की प्रकृति का मतलब है। उपनिषदों में कहा गया है कफ पंगु पित्त पंगु वायु समवाहकम, वायु कफ और पित्त को यहां वहां लेके जाती है जो कि अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाती है। तो वायु ही सबसे बड़ा दोष भी है और वायु ही सभी दोषों का निवारण भी है। इसलिए ये विशेष आग्रह हमारा वरिष्ठ नागरिकों से, आप खुद भी स्वस्थ रहें, अपने लिए भी उपयोगी रहें, परिवार के लिए भी उपयोगी रहें, योगी बने, निरोगी बने और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे वार्ता राजीव शरण योग शिक्षक से। इसके साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अभी यही समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमनसमये विश्रान्तिनिलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीयभव्यं स्वागतम् अकुर्वन्। अद्य प्रधानमन्त्री प्रमुखविपणीनां मुख्यकार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक् शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसम्बोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं सन्धिनिश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशलकेन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च सम्बोधयिष्यति। चतुर्थदिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा क्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटम् अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्यासुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भेंटवार्ता। कंधा का जाम होना और उपचार। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर पवन कुमार, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल।
4: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from members of the Indian community gathered at his hotel. In Paris, PM Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event, where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation ecosystem and technological advancements. The Prime Minister is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. Earlier, Prime Minister Narendra Modi called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measure of AI lies not in the power of machines, but in how effectively it empowers ordinary people. Addressing the session on ensuring a safe, rapid and efficient rollout of AI during the G7 summit in Evian, Mr. Modi said artificial intelligence has the potential to transform every aspect of human life. Highlighting the need to protect children in the digital age, the Prime Minister cautioned that while AI can enhance learning and creativity, it can also expose young users to misinformation, deepfakes and exploitation if proper safeguards are not put in place. The G7 leaders adopted three key declarations aimed at promoting balanced, durable and resilient growth, securing critical mineral supply chains and creating a safer digital space for miners, with several partner countries extending support to the initiatives. During the G7 summit in Evian, France, the leaders issued a statement on balanced and resilient growth, stressing the need for stable energy markets, secure supply chains and reforms in global economic institutions. They emphasized the importance of restoring safe navigation through the Strait of Hormuz, avoiding arbitrary export restrictions and addressing widening global economic imbalances. India and the United Kingdom have announced that the Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA will come into force from the 15th of July this year. Ministry of Commerce and Industries informed that the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention DCC, will come into effect on the same day. The ministry also noted that the period of exemptions under DCC has been increased from 3 years to 5 years, marking a major gain for India's temporary workers. Hailing the agreement as a triumph of economic statecraft, Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal stated that the simultaneous enforcement of the CETA and the Double Contribution Convention will open up significant new opportunities for India's exports, as India has secured immediate duty-free access on 99% of tariff lines. Prime Minister Modi has also said that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will significantly boost the bilateral trade and investment between India and the United Kingdom. In a social media post, Mr. Modi said that the agreement will also unlock numerous opportunities for Indian farmers, workers, MSMEs, startups and innovators, and contribute meaningfully to the realization of Viksit Bharat 2047. In Jharkhand, voting for two Rajya Sabha seats will be held today, with Jharkhand Mukti Morcha's Baidyanath Ram, Congress candidate Pranav Jha, and independent candidate Parimal Nathwani contesting the election. Polling will take place in the Jharkhand Legislative Assembly from 9 a.m. to 4 p.m., while counting of votes will begin at 5 p.m. and the results will be declared after that. All 81 MLAs of the Assembly will cast their votes, and the ruling alliance currently has the support of 56 legislators, including those from JMM, Congress, RJD and the CPI-ML. The opposition, backed by 24 legislators, have extended support to independent candidate Parimal Nathwani. President Draupadi Murmu will embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. On the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Betul in Madhya Pradesh. Tomorrow, she will participate in the International Sickle Cell Day celebrations at Omkareshwar in Madhya Pradesh. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Netherlands by 95 runs in a Group A match at Headingley in Leeds last night. Batting first, India posted a formidable 209 for 5 in 20 overs, powered by Smriti Mandhana's 74 and Shefali Verma's 55. And in the FIFA World Cup, England opened their Group L campaign with a 4-2 victory over Croatia at Dallas Stadium in Arlington, USA. England captain Harry Kane struck twice from the penalty spot in the 12th and the 42nd minutes. And with that, we end this news bulletin.
5: समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम विवरण।

अब से बस कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। 7:45 का समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आज के कलाकार हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। सुबह के 8 बजे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 8:45 पर कुछ फिल्मी गीतों के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। सुबह के 9 बजे जोहार पलहू कार्यक्रम आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आज वार्ता होगी ममता सिन्हा की महिलाओं के लिए कपालभाति। 9:30 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम का। सुबह के 10 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 10:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले होंगे।

दिन के 1 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से, और 1:10 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। 1:20 पर मुंबई केंद्र से हम जुड़ेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए। दिन के 2 बजे पुनः दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार रिले होंगे। 2:30 बजे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। 2:55 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। 3 बजे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। 4:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार, 4:02 पर मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 5:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 5:02 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। 5:30 पर आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से कार्यक्रम विवरण।

शाम 5:35 परिवार साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवानी। चर्चा होगी युवा योग करें, स्वस्थ रहें और अपने दिनचर्या को दुरुस्त रखें। राजीव शरण की वार्ता भी इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे, योग एक विज्ञान। शाम 6 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होगी। 6:02 का समय होगा खेती बाड़ी कार्यक्रम का। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे किसान बंधुओं को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होगी। 7:10 पर जिले में आजकल, 7:15 पर फिल्म गीत का कार्यक्रम होगा एक रंग। शाम 7:45 पर उजाले की ओर कार्यक्रम आप सुनेंगे। वार्ता होगी जल जंगल और जीवन एक अभिन्न संबंध, वार्ताकार पूनम सहाय। रात्रि 8 बजे दिल्ली के क्षमा करेंगे दोस्तों, रात्रि 8 बजे हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। रात्रि 8:10 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे वर्तमान सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम कड़ी संख्या 18। रात्रि 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार ले होंगे। रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में समाचार। रात्रि 9:30 मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और हमारी सभा की समाप्ति होगी रात्रि के 11:10 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। समय हो चुका है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग का। आइए सुनते हैं गायन राग कबीरी भैरव में श्रीमती धोडुताई कुलकर्णी से।

अभी आप सुन रहे थे राग रंग कार्यक्रम के तहत गायन राग कबीरी भैरव में। समय हो चुका है स्वर सरिता कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में सुनते हैं उस्ताद अहमद हुसैन एवं उस्ताद मोहम्मद हुसैन को।

अभी आप सुन रहे थे स्वर सरिता कार्यक्रम। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हम आपको दिल्ली के अंदर लिए चलेंगे, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। सुबह के 8 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार, 8:45 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आइए अभी समाचारों के लिए दिल्ली चलते हैं।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
1: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
2: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
3: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग अमरीका, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
5: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
6: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
7: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
8: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
6: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
9: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
6: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
10: We have a huge pool of talent.
11: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
12: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
13: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्ते ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend Viva Tech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for two Rajya Sabha seats from Jharkhand and one from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
15: France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
16: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
14: In Paris, Prime Minister Modi will attend the Viva Tech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The Viva Tech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We hear more from our correspondent.
17: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
14: The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology, innovation and people-to-people ties. President Draupadi Murmu will embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. On the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Bethul in Madhya Pradesh. We have more from our correspondent.
5: President will arrive in Indore and then travel to Bethul, where she is scheduled to attend a program organized by Brahma Kumaris. Later, she will visit the Omkareshwar temple and participate in the evening aarti. On June 19, the President will attend an event marking International Sickle Cell Anemia Day. On June 21, President Murmu will take part in International Yoga Day celebration in Jabalpur. She will also attend the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University as the chief guest. Later, she will visit Kuno National Park before returning to New Delhi. In view of the President's visit to Bethul, District Collector Dr. Saurabh Sanjay Sonwani has imposed certain restrictions as part of the security arrangements. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
14: Polling for two Rajya Sabha seats from Jharkhand and one from Mizoram will take place today. In Jharkhand, Jharkhand Mukti Morcha's Badrinath Ram, Congress candidate Pranav Jha, and independent candidate Parimal Nathwani are contesting the election. In Mizoram, candidates from the ruling Zoram People's Movement, ZPM, and the opposition Mizo National Front, MNF, are locked in a direct contest to fill Mizoram's lone Rajya Sabha seat. The BJP and the Congress have decided to abstain from voting. The India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, will come into force on the 15th of July this year. The Ministry of Commerce and Industries informed that the Agreement on Social Security, also referred as the Double Contribution Convention, DCC, will come into effect on the same day. We have more from our correspondent.
18: The Ministry of Commerce and Industries also noted that the period of exemption under the Double Contribution Convention DCC has been increased from 3 years to 5 years, marking a major gain for India's temporary workers, hailing the government as a triumph of economic statecraft. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal stated that the simultaneous enforcement of the CETA and the Double Contribution Convention will open up significant new opportunities for India's exports as India has secured immediate duty-free access on 99% of tariff lines. He said that this will allow textiles, leather, marine, engineering and processed food sectors to compete with no disadvantage and supply their world-class products. The ministry said that the India-UK CETA has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The ministry noted that this historic economic architecture effectively prepares both nations to navigate the complexities of modern international commerce while permanently accelerating India's trajectory toward an inclusive, prosperous and self-reliant Viksit Bharat 2047. Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
14: Prime Minister Narendra Modi has said that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will significantly boost the bilateral trade and investment between India and the United Kingdom. In a social media post, Mr. Modi said that the agreement will also unlock numerous opportunities for Indian farmers, workers, MSMEs, startups and innovators and contribute meaningfully to the realization of Viksit Bharat 2047. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the morning news. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal, Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government to eradicate Naxalism and bring an unprecedented wave of developmental activity in the affected regions. We have a report. The Narendra Modi government's coordinated multi-pronged strategy combining calibrated security operations, financial choking and rapid development saturation has resulted in making the country free from Naxalism and Maoist terror. Home Minister Amit Shah had formally announced that Naxalism would be completely eradicated from the entire country by 31st March 2026 and the pledge has now been fulfilled. Several landmark security operations played a decisive role in breaking the backbone of the Maoist network over the years. Operation Octopus was conducted in Budha Pahad region of Jharkhand in 2022 and Operation Double Bull liberated the Gumla, Lohardaga and Latehar districts of Jharkhand in February of the same year. Operation Thunderstorm targeted strongholds of Naxals in Saraikela, West Singhbhum and Khuti district of Jharkhand in 2022. Operation Black Forest, which was conducted in 2025 across a hill stretching 50 kilometers in length and 37 kilometers in width along the Telangana-Chhattisgarh border, dealt a severe blow to the remaining Maoist cadres. One of the residents of Bastar in Chhattisgarh had lauded the government's efforts, saying that it has fulfilled its promise of making the country free from Naxalism.
19: They fulfilled the promise they made. I thank Modi government, Amit Shah ji and Vijay Sharma ji from the bottom of my heart.
20: Amit Shah ji ko, Vijay Sharma ji ko, main hriday se dhanyawad deta hu.
14: The results of the coordinated multi-pronged strategy on the ground reflected the scale of the crackdown. Several top Naxal leaders were neutralized during this period, including Hidma, Kadri Satyanarayan Reddy, Ganesh Uike, and the Naxalite General Secretary Basavraju. These security efforts brought an unprecedented wave of development activity in Naxal-affected regions. Tambu Orao, a resident of Gumla district, Jharkhand, said that since the Modi government was formed, Naxalism has gradually come to an end and people living with peace and harmony.
21: A decade ago, our village was completely under the control of Naxalites. We are afraid to go out even during the day. Since 2014, when the Modi government was formed, gradually that fear has disappeared. Today we are living a peaceful life. The village is developing. They have made roads. It is very good now.
14: The National Investigation Agency played a critical role in disrupting Naxalite financing, significantly depleting their operations. operational resources. Today, the story of Naxal-free India stands as a testament to the triumph of democracy, development and the constitution over decades of violence. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: US President Donald Trump and Iranian President Masoud Pezeshkian have virtually signed a 14-point memorandum of understanding aimed at ending hostilities between the two countries, reopening the Strait of Hormuz, and launching a 60-day process to negotiate a final agreement on sanctions and Iran's nuclear program. We have a report.
2: The White House said that Mr. Trump signed the MOU personally while meeting French President Emmanuel Macron in Paris. On the other hand, Iranian Foreign Ministry spokesperson confirmed that the text of the memorandum has been finalized and signed by both sides. He stated that consultations with Oman and other countries have been underway for some time and that arrangements for managing the Strait of Hormuz have largely been agreed upon. The US has released the official text of the MOU. The 14-point agreement includes an immediate and permanent cessation of military operations, including in Lebanon, and a pledge to conclude negotiations on a final deal within 16 days, extending by mutual consent. Under the MOU, the US will begin removing its naval blockade and related restrictions, while Iran will facilitate the safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz free of charge for an initial 60-day period. The document also outlines plans for the phased lifting of sanctions, the release of frozen Iranian assets, treasury waivers for Iranian oil exports, and a US-backed reconstruction and economic development program for Iran worth at least $300 billion. Iran also reaffirmed in the memorandum that it will not develop or acquire nuclear weapons. The agreement also provides for discussions on the future of Iran's enriched uranium stockpiles under the supervision of the International Atomic Energy Agency. With Vishal's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
1: In men's cricket, India defeated Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series in Lucknow to take an unassailable 2-0 lead. Put into bat first, India posted a massive 402 runs in 49.5 overs before being bowled out, powered by Shubman Gill's 154 and Ishan Kishan's 125. For Afghanistan, Nange Alia Karoti picked up 4 wickets while Rashid Khan claimed 3. In reply, Afghanistan would bundle out for 232 in 44.3 overs. For India, Arshdeep Singh and Gurnoor Brar picked up 3 wickets while Prince Yadav claimed 2. Shubman Gill was adjudged the player of the match. The third and last match will be played in Chennai on Saturday. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Netherlands by 95 runs in a Group A match at Headingley in Leeds last night. Batting first, India posted a formidable 209 for 5 in 20 overs, powered by Smriti Mandana's 74 and Shafali Verma's 55. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
22: Thank you, Nishit. News of Prime Minister Modi meeting US President Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France is carried prominently by all the leading dailies. US President Trump says will help India, led by Prime Minister Modi, if attacked, according to Hindustan Times. India-UK trade deal to come in effect from July 15th. No tariff on key exports, writes the Tribune. Parliamentary board meet convened by Shiv Sena UBT today amid split rumours, says the Hindu. Delhi High Court seeks government reply as Telegram challenges ban over NEET exam, according to a report in the Times of India. 10-year wait ends as NSE files for IPO, while Reliance Jio set to file for IPO this week, reports Financial Express. And finally, in QS rankings, IIT Delhi tops India list for second year. Delhi University shines as well, says the Indian Express. And with that, it's back to you, Nishit.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend Viva Tech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in the French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end the West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series to take an unassailable 2-0 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
23: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए विधानसभा में मतदान आज शाम तक आएंगे चुनाव परिणाम। 10 लाख रुपए की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली पुष्पा महतो ने 21 वर्षों बाद पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि को व्यवसायिक रूप देने पर दिया जोर। उन्नत कृषि विधि अपनाने के लिए किसानों से की अपील। मौसम विभाग ने आज से रांची समेत 17 जिलों में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की जताई संभावना। तेज हवा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में जमशेदपुर स्टीलर्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 16 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए आज मतदान होगा, जिसके लिए झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि मतगणना शाम 5 बजे से होगी और चुनाव परिणाम भी आज ही आएंगे। चुनाव में विधानसभा के सभी 81 विधायक मतदान करेंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 56 विधायकों का समर्थन है, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले हैं। वहीं एनडीए के 24 विधायकों का समर्थन निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को प्राप्त है। इधर चुनाव में क्रॉस वोटिंग रोकने और अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सत्तारूढ़ महागठबंधन के विधायकों ने बैठक की।
4: विधायक विधानसभा में पहुंचकर 4 बजे तक का समय है, लेकिन उसके पहले ही सारा मतदान समाप्त हो जाएगा और उसके उपरांत जो निर्णायक जो पल आएगा वो 6 बजे तक हो जाएगा। सब लोकतंत्र के प्रहरी हैं।
3: वहीं एनडीए विधायकों ने भी निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत की रणनीति बनाई।
7: यहाँ सवाल जीत हार का नहीं है, हमने तो सिर्फ समर्थन दिया है एनडीए की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। हमने शुरुआत में समर्थित एक रूपता बनाने का आग्रह किया नाथवानी जी ने, उन्होंने सारे घटक दलों से अप्रोच किया, फिर हम लोगों ने बैठक बुलाई। तो एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हमें पूरी आशा है कि वो जीते। जिस तरीके का हमें रुझान देखने को मिल रहा है, फीडबैक्स आ रहे हैं, तो संभवतः हम हाईएस्ट वोट लाकर जीतेंगे।
3: राज्यसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर बनाए गए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।
23: आरओ से रिपोर्ट आ गया, उनका वोटिंग के लिए कितना भी तैयारी करना वो तैयारी हो चुका है, उसका संबंधित तो हम लोग रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कर रहा है। ऑलरेडी मैनुअल दिया हुआ रिटर्निंग ऑफिसर का, उनका इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, उसी मैनुअल के अनुसार उनका काम निष्पादन करना है।
3: वहीं इस चुनाव को लेकर रांची में हाई अलर्ट है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों की तैनाती सादे लिबास में की गई है। वे विधायकों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। 10 लाख रुपए की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली पुष्पा महतो ने 21 वर्षों बाद हथियार छोड़कर कोलकाता में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। झारखंड के सारंडा जंगलों में संयुक्त बलों के बढ़ते दबाव और केंद्र सरकार के माओवादी मुक्त भारत अभियान के तहत चौतरफा घिरने के बाद पुष्पा महतो ने हथियार डालने का फैसला किया। वह झामुमो के तत्कालीन सांसद सुनील महतो हत्याकांड और बुरुडी लैंडमाइन विस्फोट समेत कई चर्चित नक्सली घटनाओं में आरोपी रही है। राज्य सरकार ने 2 आईएएस अधिकारी समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के 88 अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार लाल को मेदिनीनगर का नगर आयुक्त और सुलोचना मीना को देवघर का नगर आयुक्त बनाया गया है। झारखंड में एटीएस अब झारखंड सीआईडी के अधीन काम करेगी। झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पूर्व में एटीएस को लेकर जारी किए गए सभी निर्देशों को विलोपित कर दिया गया है। रांची में यूजीसी नेट परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने 6 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा 22 जून से 30 जून 2026 तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक तथा प्रभावी रहेगी। इस अवधि में 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, हथियार लेकर चलने तथा सभा बैठक आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
6: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के ने कृषि को व्यापार के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले के दूसरे दिन कल उन्होंने कहा कि यह समय खेती को व्यवसायिक रूप देने का है और यह तभी संभव होगा जब किसान उन्नत कृषि विधि अपनाएंगे।
9: झारखंड सरकार की ये सोच है कि क्यों ना हम लोग किसानों को भी व्यापारियों की तरह सोचना और कार्य करना सिखाएं। विश्व भर के प्रसिद्ध संस्थाएं हैं, वहां से आए हुए विशेषज्ञगण अपना ज्ञान यहां पे साझा कर रहे हैं, अलग अलग विषयों में चर्चा हो रहा है, लगातार किसान हर एक दिन उन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। हम लोगों को भी अपना प्रयासों को एक पटल में रखने का मौका मिला है।
3: लातेहार जिले में 3 दिवसीय ड्यूटी मीट का कल शुभारंभ हुआ। इस मौके पर डीआईजी कौशल किशोर ने कहा कि इसका उद्देश्य झारखंड पुलिस को आधुनिक तकनीक और नवीन पुलिसिंग प्रणाली से अवगत कराना है।
10: 6 क्षेत्रों के कई विषयों पर प्रतियोगिताएं होनी है, जो आमतौर पर अनुसंधान से, फोटोग्राफी से, वीडियोग्राफी से, फिंगरप्रिंट से, एंटी सबोटाज इत्यादि विषयों से जुड़ी हुई है, जिसमें कि हमारे पदाधिकारियों और कर्मियों को अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और जो बेहतर करेंगे उन्हें आगे चलकर राष्ट्रीय पुलिस ड्यूटी मीट में भी भाग लेने का मौका मिल सकता है। बहुत अच्छा अवसर पुलिस विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए होता है।
3: मौसम, झारखंड में आज से मॉनसून के फिर सक्रिय होने की संभावना है। आज और कल रांची समेत 17 जिलों में आंधी और बारिश और वज्रपात की संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे झारखंड T20 क्रिकेट लीग के 8वें दिन जमशेदपुर स्टीलर्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 16 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर का शीर्षक है, झामुमो के वोट से वैजनाथ की जीत तय, दूसरी सीट प्रणव या नाथवानी को, आज विधानसभा के कमरा नंबर 42 में फैसला। दैनिक भास्कर ने G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार ने ट्रंप के हवाले से लिखा है, मोदी के रहते भारत पर हुआ हमला तो हम साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान ने रांची में संघ कार्यालय पर हमला होने और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, तृणमूल के बाद शिवसेना यूबीटी में टूट लगभग तय। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए विधानसभा में मतदान आज शाम तक आएंगे चुनाव परिणाम। 10 लाख रुपए की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली पुष्पा महतो ने 21 वर्षों बाद पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि को व्यावसायिक रूप देने पर दिया जोर। उन्नत कृषि विधि अपनाने के लिए किसानों से की अपील। मौसम विभाग ने आज से रांची समेत 17 जिलों में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की जताई संभावना। तेज हवा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जेएससी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में जमशेदपुर स्टीलर्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 16 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखें, सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का आगाज ये करते हैं फिल्म द ट्रेन किस गीत से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं। समय हो चुका है कार्यक्रम जोहार पलामू का।
1: जोहार पलामू।

मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे, क्योंकि व्यस्तता आपको कुछ भी नकारात्मक सोचने का मौका नहीं देती। आप व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना हम करते हैं। और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए हर रोज़ लेकर आते हैं कोई न कोई सुविचार। आज के सुविचार हैं बाल गंगाधर तिलक के। इनका कहना है कि आपके विचार सही, लक्ष्य ईमानदार और प्रयास संवैधानिक हो तो पूर्ण विश्वास है कि आपकी सफलता निश्चित होगी। बात करें मौसम की तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हल्की बारिश की संभावना बन रही है और ह्यूमिडिटी की बात करें तो 45% ह्यूमिडिटी है आज के माहौल में। और कल यानी कि 19 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तो मौसम की इस जानकारी के बाद इस कार्यक्रम का पहला गीत आप

इस गीत के बाद आइए निगाह डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों पर। नरेश अग्रवाल को आईपीएस सम्मान, राज्य के पहले छायाकार बने। देश में अब तक मात्र 60 छायाकारों को ही मिला है यह गौरव। जमशेदपुर के शौकिया छायाकार नरेश अग्रवाल को अमेरिकन फोटोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा विशिष्ट सम्मान ईपीएसए प्रदान किया गया है। भारत में अब तक मात्र 60 लोगों को ही यह सम्मान दिया जा चुका है। नरेश अग्रवाल झारखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। यह सम्मान किसी भी छायाकार की कम से कम 700 तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने के योग्य पाए जाने पर दिया जाता है। ज्ञात है कि अमेरिकन फोटोग्राफिक सोसाइटी पीएसए द्वारा दिया जाने वाला ईपीएसए एक्सीलेंस इन पीएसए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी डिस्टिंक्शन उपाधि है। यह सम्मान सोसाइटी के सक्रिय सदस्यों के को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में उनकी असाधारण फोटोग्राफी उपलब्धि और स्वीकृतियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस उपलब्धि के बाद अमेरिकन फोटोग्राफिक सोसाइटी द्वारा आयोजित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता में उन्हें चयनकर्ता के रूप में शामिल किया जा सकता है। राज्य के 11 और उत्पादों को मिला जीआई टैग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, यह हमारे पारंपरिक ज्ञान का है सम्मान। स्थानीय कला शिल्प और पारंपरिक उत्पादों को संरक्षण और पहचान दिलाने की दिशा में झारखंड की बड़ी उपलब्धि। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की अनूठी कला शिल्प कृषि उत्पाद और पारंपरिक वस्तुओं को पहचान दिलाने, उन्हें सुरक्षा कर देने और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जीआई रजिस्ट्री ने हाल ही में राज्य के 11 महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य झारखंड के पारंपरिक उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, बाजार में उनकी पहचान बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 11 उत्पादों को जीआई टैग मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प और स्थानीय 11 नए उत्पादों कोचाई रेशम साड़ी और वस्त्र, भगैया साड़ी और वस्त्र, दुमका चादर, बदोनी कठपुतलियां, पंछी परहन, पंछी साड़ी और वस्त्र, झारखंड तसर रेशम साड़ी और वस्त्र, झारखंड डोकरा शिल्प, झारखंड जनजातीय आभूषण, झारखंड बांस शिल्प, केसरिया कलाकंद, झारखंड बेनाम और झारखंड जादोपटिया चित्रकला को जीआई टैग मिलने से वैश्विक पहचान मिल रही है। यह हमारे मेहनती कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों, किसानों और आदिवासी समुदायों की कड़ी मेहनत, कौशल और पारंपरिक ज्ञान को सम्मान है। वर्ष 2019 में केवल एक उत्पाद को जीआई टैग मिला था, जो अब बढ़कर 12 हो गया है। यह पूरे राज्य के लिए अत्यंत गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा, जीआई टैग न केवल उन उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा बल्कि इनकी प्रामाणिकता भी स्थापित करेगा, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान और बेहतर आर्थिक अवसर सुनिश्चित होंगे। सीएम हेमंत सोरेन के विजन और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत ने बदली तस्वीर। पलाश ब्रांड से वैश्विक बाजार तक पहुंचा झारखंड का आम। कोरोना काल में शुरू की गई थी वर्षा हरित ग्राम योजना, इस सीजन में लगभग 50,000 मीट्रिक टन उत्पादन का है अनुमान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विजन और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत के अनूठे संगम ने प्रमाणित कर दिया कि यदि दूरदर्शी सोच और कड़ी मेहनत एक साथ मिल जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वैश्विक ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। इसी सोच और कड़ी मेहनत से पलाश ब्रांड के तहत झारखंड मैंगो मार्केटिंग इनिशिएटिव ने ग्रामीण महिलाओं और किसानों की तकदीर बदल रही है। आज झारखंड का आम न केवल देश के रिटेल चेन बल्कि सात समुद्र पार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी मिठास खोल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत कोरोना संक्रमण काल में हुई थी। सखी मंडल की दीदियों के साथ संक्रमण काल में अपने गाँव लौटे प्रवासी श्रमिकों ने योजना को अपने आजीविका का साधन बनाया था। इसका असर आज साफ दिख रहा है और अधिकतम उत्पादन करके झारखंड पूरे विश्व पटल पर सम्मान पा रहा है। राज्य में एटीएस अब सीआईडी के अधीन काम करेगी। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने जारी किया आधिकारिक आदेश। राज्य में देश विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद से निपटने के लिए गठित आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस अब अपराध अनुसंधान विभाग सीआईटी के अधीन कार्य करेगा। इस संबंध में झारखंड की पुलिस महानिदेशक डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बुधवार को आधिकारिक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पूर्व में एटीएस को लेकर जारी सभी निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है। अब एटीएस की सभी प्रशासनिक अनुसंधान, जांच और परिचालन संबंधी गतिविधियां पूर्ण रूप से सीआईडी के निर्देशन में संचालित होंगी।

पतंजलि योग समिति की बैठक में विशेष योग सत्र आयोजित करने का निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर तैयारियां हुई तेज। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को पतंजलि योग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योग दिवस कार्यक्रम को भव्य एवं सफल बनाने के लिए व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि योग दिवस के अवसर पर विशेष योग कक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षित योगाचार्यों के मार्गदर्शन में योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान सत्र आयोजित होंगे। समिति के सदस्यों ने क्षेत्रवासियों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। बैठक में योग को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया कि तनाव, अनिद्रा, मोटापा और अन्य जीवन शैली संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। बैठक में योगाचार्यों ने और आम जनता ने भाग लिया और सभी ने यह प्रण किया कि योग को जन जन तक पहुंचाएंगे। यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए निकाली गई बाइक रैली। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने जेएलए कॉलेज परिसर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यातायात नियम अपनाएं, सुरक्षित झारखंड बनाएं अभियान के तहत आयोजित रैली शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने तथा यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। डीटीओ प्रमोद कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में रोड सेफ्टी मैनेजर विनीत कुमार सहित सड़क सुरक्षा सेल के अन्य सदस्य उपलब्ध थे। कारगिल विजय दिवस समारोह की तैयारी को लेकर पूर्व सैनिकों की बैठक 21 जून को। हर साल की भांति इस साल भी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित होंगे भव्य कार्यक्रम। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पलामू की जनरल बॉडी की आगामी बैठक 21 जून को पूर्वाह्न 10:30 बजे RSS कार्यालय के सभागार में आयोजित होगी। बैठक में कारगिल विजय दिवस की समारोह की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। परिषद के जिलाध्यक्ष दामोदर मिश्र और महासचिव सुनील कुमार सिंह ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की योजना की जानकारी दी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 5 दिवसीय दौरे से पहले मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओमकारेश्वर के 2 दिवसीय दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने सभी जिलों की पुलिस को निर्देश दिया है कि वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकस रहें और इन 2 दिनों के दौरान कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हर मुमकिन प्रयास करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। वह 18 जून को इंदौर से ओमकारेश्वर पहुंचेंगी। अपने आगमन के बाद वह प्रार्थना करेंगी और पूजनीय ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगी। इसके बाद 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आधिकारिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को आसान बनाने के लिए ओमकारेश्वर में ट्रैफिक में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इन मुख्य खबरों के बाद आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं और हम सभी को यह मालूम है कि योग करके हम निरोग रह सकते हैं। करी

रोग रहे निरोग, यह सबको पता है, लेकिन आलस्य या लापरवाही के कारण हम सब योग की ओर अपना ध्यान नहीं आकृष्ट करते और हम समय अपना नहीं लगाते हैं योग की ओर, और सुबह उठकर ही हम अपने रोज की दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जैसे जैसे हम सबों की उम्र बढ़ती है, हम कई बीमारियों से घिर जाते हैं। खासकर जो हमारी महिलाएँ होती हैं, वे पूरे परिवार का ध्यान तो रख लेती हैं, बच्चों को देख लेती हैं, बुजुर्गों की सेवा कर लेती हैं, पति का ख्याल रखती हैं, लेकिन अपने लिए, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती। परिणाम यह होता है कि वो अचानक से बीमार हो जाती हैं, अस्वस्थ हो जाती हैं, कई बीमारियां उनको घेर लेती हैं। तो महिलाओं को क्या करना है, कौन कौन से योग करने हैं, और ख़ास करके जो कपालभाति है उसका महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर जानकारी दे रही हैं योग शिक्षिका ममता सिन्हा जी। आइए सुनते हैं इस वार्ता को।

योग करने वाली महिलाओं में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हेमोग्लोबिन उनका ठीक रहेगा, कभी भी हेमोग्लोबिन कम नहीं होगा। एक समय ऐसा आता है जब हम लोग महिलाओं के शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं। इसी परिवर्तन में एक मोनोपोज है, एक निश्चित अवस्था में हम महिलाओं का पीरियड रुक जाता है, मोनोपोज की स्थिति आती है। उस समय हम महिलाएं एकदम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, गुस्सा। ये क्यों होता है? शारीरिक परिवर्तन के कारण होता है। जो महिलाएं योग करेंगी उन्हें यह समस्या होगा ही नहीं, हमेशा ताजगी बनी रहेगी, खुश रहेंगे। तो कपालभाति प्राणायाम बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरह से समझकर, किसी भी साफ सुंदर स्वस्थ स्थान पर बैठकर महिलाएं इसको जरूर करें और अपने जितने भी तरह के रोग हैं उनसे छुटकारा पा सकती हैं। इसके बाद हम वाय और अग्निशार होता है, तो वाय करने के लिए हम श्वास को पूरा भीतर भरते हैं और पेट को भीतर खींच के रखते हैं। जितना देर आप खींच कर रख सकते हैं, जितना देर आपको सामर्थ्य है उतना देर तक पेट को भीतर खींच कर रखें। जैसे ही आपको लगे कि अब नहीं हो रहा है तो श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में चले आए, तो इसको बोलते हैं वाय प्राणायाम। एक बार फिर से समझ ले वाय प्राणायाम को, सांस को पूरा भीतर भरेंगे, पूरा बाहर छोड़ देंगे, छोड़ करके पेट को पूरा भीतर खींचेंगे और कंठ को अपने कंठकूप में लगा लेंगे। जितने देर आप इस अवस्था में रह सकते हैं इस अवस्था में रहें। जैसे ही आपको लगे कि नहीं अब सांस लेना चाहिए, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठा करके आप श्वास ले लें। इसी के साथ अग्निशार क्रिया है। अग्निशार क्रिया में क्या करते हैं, पूरा श्वास लेते हैं और लिया हुआ श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे, छोड़ करके पेट को आगे पीछे करते हैं, पूरे पेट का सफाई होता है इससे। जब हम पेट को हिलाते हैं तो इससे पूरा, बोलते हैं ना मोटरसाइकिल का सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरह से पेट का सर्विसिंग करना। तो इसके लिए वाय और अग्निशार। अग्निशार को एक बार फिर से समझे, सांस को पूरा लेंगे और पूरा छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद पेट को आगे पीछे हिला लेंगे। तो जहां तक महिलाएं हैं, जितने भी तरह की कष्ट है आज, वो हम लोगों की दिनचर्या अनियमित होने के कारण, लाइफस्टाइल गलत होने के कारण बहुत सारी समस्याओं से हम महिलाएं जूझ रहे हैं। और इन सबको समस्याओं को दूर करने के लिए हमको योग प्राणायाम करना होगा, भस्त्रिका, कपालभाति, वाय, अग्निशार। इसके बाद हमारा अनुलोम विलोम आता है। अनुलोम विलोम में ये जितने भी तरह के आप सांस से संबंधित रोग जानते हैं, नस से संबंधित जितने भी रोग जानते हैं, वो सब अनुलोम विलोम से दूर होगा। महिलाएं दिन भर काम करके थक जाती हैं, उनका उठना बैठना सही नहीं है, सोने का तरीका सही नहीं है, जहां समझ में आया बैठ गए, पैर फैला लिए, जहां मन में आया जैसे मन में आया सो लिए। तो इन सब के चलते जो भी नस नारी में दर्द है वो सब अनुलोम विलोम से दूर होते हैं। जितने तरह का नजला है, सर्दी है, जुकाम है, माइग्रेन की शिकायत है, वो सब हमारा अनुलोम विलोम से ठीक होता है। तो अनुलोम विलोम करने के लिए भी है, इसको भी सही तरीके से महिलाएं करेंगी। अनुलोम विलोम करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने नाक को बंद करते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वास को भरते हैं, फिर बाएं नाक को दो उंगली से बंद करके लिया हुआ सांस को दाहिने से छोड़ देते हैं, फिर दाहिने से लेते हैं, फिर अंगूठे से दाहिने को बंद करके

दाएं से छोड़ देते हैं, ये एक चक्र हुआ। तो ये अनुलोम विलोम विशेषकर महिलाओं के लिए मन को शांत रखने के लिए अनुलोम विलोम करना बहुत ही जरूरी है। और बार बार जो हमको सर्दी होता है, एलर्जी होता है, सर दर्द होता है, शरीर में अकड़न होता है, नस की शिकायत होती है, कमर दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, इन सब में अनुलोम विलोम। इसके साथ साथ हम लोग कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए काम करते करते यदि महिलाएं थक गई हैं, हम थक गए हैं, तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लें। सूक्ष्म व्यायाम करने दोनों हाथ को सीधे अपने कंधे के ठीक सामने दोनों हाथ को खोल लें और पंजे को आगे ऊपर नीचे कर लें। दोनों हाथ को आकाश की ओर खोल करके श्वास लेते हुए कंधे को छूना, फिर खोलना, फिर साइड से हाथ को खोलना और कंधे को छूना। फिर गर्दन के लिए कर लेते हैं, श्वास लेके एकदम ऊपर देखते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए एकदम नीचे देखते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर इसको दो से चार बार, तीन से चार बार कर लें। फिर गर्दन को सांस लेते हुए दाहिनी ओर मोड़ते हैं, जितना दूर तक आप गर्दन को मोड़ सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार मोड़े, फिर सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाते हैं, फिर सांस लेते हुए बाईं ओर देखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे, गर्दन को अपने कंधे की ओर दाहिनी ओर झुकाएंगे, थोड़ी देर रुक करके फिर बीच में आ जाएंगे, फिर बाईं ओर झुकाएंगे, थोड़ी देर रुक करके फिर बीच में आ जाएंगे। इस तरह से गर्दन की में अगर अकड़न हो, गर्दन में थोड़ा भारीपन लग रहा हो, तो ये सूक्ष्म व्यायाम हम कर सकते हैं। हाथों के लिए भी है, दोनों हाथ को सामने कर लेंगे, दोनों कलाई को गोल गोल घुमा लेंगे। ध्यान रखेंगे जब हम कलाई को घुमाएं तो हमारा केहुनी नहीं मुड़ना चाहिए, हाथ कंधे के ठीक सामने एकदम बराबर में खुलना चाहिए। दोनों हाथ को खोलकर ऊपर नीचे कर लेंगे, दोनों हाथ को कंधे पर रख करके श्वास लेते हुए दोनों आगे से दोनों हाथ को सटा लेंगे केहुनी को, और श्वास लेते हुए एकदम ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, एकदम गोल गोल हाथ को घुमाना, ये पूरा कंधा हमारा गोल गोल घूमेगा। इसी को फिर विपरीत दिशा से भी करते हैं, दोनों हाथ को सर के पीछे ले जाते हैं, एक दूसरे से पकड़ लेते हैं, श्वास लेते हुए बाएं हाथ को दाहिनी ओर खींचते हैं, फिर बीच में आएंगे, फिर श्वास लेते हुए दाहिने हाथ को बाईं ओर खींचेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। पैर का भी है, अगर हमारा बहुत कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है,

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: इसके साथ ही आज के जोहार पलामू कार्यक्रम का समय अब यही समाप्त होता है। नमस्कार, जोहार।
4: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर शर्मिला वर्मा का, संयोजन श्री एस के लाल का। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
0: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
0: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोता, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र के रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओ, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी

0: खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनत के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे।

मेरी जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। ना, जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप

0: और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
0: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
0: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार कर

0: बुद्धि नहीं है। तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना?

0: कल आना, परसों आना, रोज आना।
1: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
0: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
1: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
1: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
2: माँ
1: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
1: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़ी
1: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद 10:10 पर मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। आइए अभी समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी,

0: संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोराम पीपुल्स मूवमेंट और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति तथा 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर वार्ता पूरी करने का वादा शामिल है। इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदार दराज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from members of the Indian community gathered at his hotel.
3: I feel India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything. So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the Viva Tech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The Viva Tech Summit is Europe's largest technology and startup event, where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology, innovation and people-to-people ties. President Draupadi Murmu will embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. On the first leg, the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Betul in Madhya Pradesh. Tomorrow, she will participate in the International Sickle Cell Day celebrations at Omkareshwar in Madhya Pradesh. Later the same day, the President will inaugurate a medical camp organized by AIIMS Bhubaneswar and dedicate a mega integrated rural piped water supply project for mining affected villages under Kusumi block at Rairangpur in Odisha. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the passing of renowned Buddhist scholar Robert A.F. Thurman. In a social media post, Mr. Modi stated that Mr. Thurman's work popularized Buddhist thought globally and helped build strong bridges of mutual understanding among diverse cultures. Hardcore woman Maoist Pushpa Mahato, carrying a bounty of 10 lakh rupees, surrendered before Kolkata police in West Bengal after laying down her arms following 21 years of insurgency. Facing mounting pressure from joint security forces in Jharkhand's Saranda forest and the central government's Maoist Free India campaign, she decided to abandon the path of violence. The surrender took place in the presence of Police Commissioner Ajay Nanda in Kolkata. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will come into force on 15th of July this year. The Ministry of Commerce and Industries informed that the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, will come into effect on the same day. Prime Minister Narendra Modi has said that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will significantly boost the bilateral trade and investment between India and the United Kingdom. In a social media post, Mr. Modi said that the agreement will also unlock numerous opportunities for Indian farmers, workers, MSMEs, startups and innovators and contribute meaningfully to the realization of Viksit Bharat 2047. US President Donald Trump and Iranian President Masoud Pezeshkian have virtually signed a 14-point Memorandum of Understanding or MOU aimed at ending hostilities between the two countries, reopening Strait of Hormuz and launching a 60-day process to negotiate a final agreement on sanctions and Iran's nuclear program. White House also said that Trump signed the MOU personally while meeting French President Emmanuel Macron in Paris yesterday. Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai confirmed that the text of the memorandum has been finalized and signed by both sides. The India Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal today. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for today. The Met Department has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand during the next 2 days. In FIFA World Cup, Yerenki's last-minute goal helped Ghana secure victory over Panama by 1-0 in Group L clash at Toronto Stadium. Earlier, England opened their Group L campaign with a 4-2 victory over Croatia at Dallas Stadium in Arlington, USA. And that is the end of this news bulletin.
4: से पूछा नहीं है और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए. बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए. जो इतना बड़ा सवाल है
5: जी जी.
4: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है. वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा. क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है. अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से कम.
5: रास्ते में है अभी तो.
4: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा. मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या. जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी नहीं.
5: पढ़ाई में थे कैसे आप?
4: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में.
5: मन कहीं और लगता था.
4: मन मेरा खेलने कूदने में और अकेले बहुत समय बिताया मैंने. मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
5: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
4: जहाँ

0: मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट, वो खेत खलियान वहाँ बहुत हैं, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप
1: जी
0: वहाँ अगर गए हों कभी या जाने का मौका मिले
1: गया
0: आपको, तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में हैं। बड़ी शांति है वहाँ, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन और पता नहीं क्या क्या,
1: जी
0: मतलब बाग बगीचे वहाँ पे हैं, और लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा, मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
1: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंगपना जो है वो आपको बड़ा पसंद है, वो
0: हाँ वो है।
1: अक्कड़पन, वही जिंदगी की जो होती है अलमस्त, जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
0: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना, इस सच को हम उसका सामना करने में बड़ा कतराते हैं कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए, हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे हमको कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके, हाईवे पे कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता
1: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें,
0: है।
1: और इस पल में मैं समझता हूं कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है
0: हाँ, चूंकि बात
1: आपको।
0: अब चल रही है पलों की, तो
1: हाँ
0: एक गाना तो बन गया,
1: कौन सा है?
0: पल पल दिल के पास तुम रहते हो।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत गाना है, और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है ना, ब्लैकमेल फिल्माया गया है।
0: फिल्मों के बगैर मुझे
1: हाँ
0: नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत।
1: आइए सुनते हैं।

0: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विवेक भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राज जी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से, अब शायद नहीं हूँ, थोड़ा बेशरम हो गया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूं। ऐसे मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं, इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा जब दादाजी हमारे चले गए, और चूंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज्यादा संग रहा नहीं, सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहां से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहां से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहां पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार, क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये इंस्पेक्टर जहाँ यहाँ लिखा है, ये सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहां से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरे यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूं तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊं, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से, तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने में, यार अब तक की बहुत बड़ी गलती की लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। और अगले दिन शाम को हम लोग गए, तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह कि कहां मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
0: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
1: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, मुझे सिर्फ ये था यार मैं क्यों
0: कहां फंस गया,
1: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था। वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं, ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन, और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा, और फिर 1-1.5 महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में मतलब कि अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है वहां से वो कब पैदा हो गया उस रस की वजह से
0: कुछ कुछ होने लगा,
1: कुछ होने, मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहाँ जा रहे हो यार खेलते ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था, हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी जहाँ पे हम सब्जियां उगाया करते थे, तो मैंने बहुत सारी सब्जियां, हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में, वहीं पे कुआं था वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
0: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
1: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।

0: विजय भाई, और कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
1: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई आपस में, हो जाती है बिना तना

0: तनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे, रिपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, मैनेस्ट्री रिपेट्री का। जब वो बात वाक्या हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आएँ। तो 98 में मैं बॉम्बे आया, पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगें और जाएं कहाँ, सड़क पे तो कोई घूमता नहीं है, तो पड़े रहे मतलब घर में और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे मतलब करें कैसे क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने यार ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे और एड्रेस जाके वहाँ फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत बड़ी चीज़ है, कहाँ पे आपका क्या होगा, आप अपनी तरफ से चीज़ें करते ज़रूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में हर चीज़ किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
1: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
0: बिल्कुल मानता हूं। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं, और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीजें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा, वहां कैसे, किसने किसी ने प्रेरित किया आपको या कहीं से आपको जानकारी मिली?
0: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था मुझे तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूं मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन हैं, ऐसा कुछ मेरे ये सब मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस, बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, तो मैंने यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में, बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोटा भैया इसको कह लें, तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका जो रेपिटरी चीफ हुआ करते थे उन दोनों, बड़े ही प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था, और उनको बड़ा पसंद आया, तो मुझे उन बुलाया रेपेट्री में कि सुनो तुम रेपेट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपये मिलेंगे, और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3000 के बाद मैं 3000 के

0: हिसाब लगाने लगे, 6 महीने के लिए बुलाया है तो 6 18 18 18 हजार में इतना इतना इतना ना, मैं वो आंकड़े में चला गया बाकी वो क्या बोल रहे मुझे कुछ नहीं मालूम फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या? हाँ मैं करूंगा। ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18 हजार रुपये मिल गए, बस 1 1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं, जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं, क्या अच्छा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे पता नहीं, अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। तो कौशल साहब ने, आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने किया मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, और जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने, यार पता नहीं कैसे। तो पहले वो लोग 1 साल के लिए लेते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां पर। तो 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिया तो मैंने फट से, फिर तनख्वाह हो गई 4 हजार, तो 12 चौक 48 मैंने 48 हजार का हिसाब लगा लिया मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर 2 साल के लिए मिल गया और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया। फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफी इंपॉर्टेंट काम रिपेटरी ने मुझे दिया और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
1: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
0: M.K. रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, D.R. अंकुर साहब, बजाज साहब, B.M. शाह, मोहन उप्रेती साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है
1: विजय भाई, अभी मौका है एक और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे
0: अभी किशोर साहब का गाना है, शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी है, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: किशोर दा भी कुछ ऐसी ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें एक गाना है एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बातें हैं। बचपन में मैं काफी फिल्में देखा करता, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात, जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपये महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया, फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
1: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था अकाउंट्स की पार्ट टाइम।
0: ये जरूरत थी एक?
1: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक

0: मॉडेस्ट सी तनख्वाह कि जिसमें एक दो तीन बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हो, ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
1: अभी भी?
0: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट। हालांकि कुछ जरूरतें जो होती हैं बेसिक, वो सारी हैं आसपास। ये कर दूंगा मैं जो पैसे के बल पे जो चीजें होती वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफी है। तो कई बार देने में बड़ा मजा आता है मुझे, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहां चला जाए तो ज्यादा मजा आएगा।
1: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं।
0: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मॉनसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है। और वो फिल्म नसीर साहब मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई। एक प्ले वो देखने आए थे, अग्नि और बरखा एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
1: जी।
0: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए। और वो हमारी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई, और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं। दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहा हूँ। जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में दोबारा हमको मौका मिला काम करने का बारह आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया। मॉनसून वेडिंग और बारह आने के बीच में ऑलमोस्ट आठ नौ साल का अंतर है। इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, न फोन पे ना मुलाकात हुई। और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
1: आपसे दूर हूँ,
0: आपसे मिला नहीं। और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूँ। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बट वहां से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
1: कहाँ दिया था आपने? बॉम्बे में।
0: बॉम्बे में
1: तो मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो।
0: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे ये फोन आया था। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, उसके लिए मैं वहां पे था। और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया। तो नेक्स्ट डे मैं आया तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था। और होटल में मुलाकात होनी थी तो मैं नीचे बैठा रहा काफी देर तक कि मैं कैसे पूछूं मतलब किससे यार कि क्या। तो मैंने कहा मीरा नायर जी ओ आया तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा शायद इनको पता हो गया मैं आने वाला हूं, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए। बुलाया नहीं किसी ने, काफी समय बीत गया मतलब आधा पौना घंटा। मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने। मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं नहीं। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग क्या। एनीवे तो थक गई थी काफी, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओह सॉरी चाय पियेंगे। मैंने हाँ हाँ बिल्कुल। हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में। उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
1: आपसे कौन सा वही जो जिस करेक्टर को आपने
0: हाँ, हाँ,
1: वही उसी के
0: उनके पास थी और मैंने कर दिया। बैठे रहे बात बात होती रही, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ।
1: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये
0: हाँ ये सब बताया, तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ। और ये सारी बातें भी बताई कि भाई ऐसा ऐसा है हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मैं मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उठती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे ही एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है ना कि कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीजें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं। वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है, इसीलिए कहते हैं ना यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया जितना समय उन्होंने दिया, यार उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो

0: बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ तीन लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बम्बई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूँ। मैंने कहा अरे वो वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा। वो तो मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए। मुझे एक फ़ोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद, मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फ़ोन है और ये मीरा जी का फ़ोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फ़ोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फ़ोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो ये सब करके, कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
1: क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको
0: कि नहीं नहीं नहीं दैट आई नो, बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए।
1: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
0: दिल्ली में। और
1: उसी में आपने पहली बार फिल्म कैमरा फेस किया?
0: नहीं, उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था। उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स भी कर चुका था। भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी।
1: भोपाल एक्सप्रेस,
0: हाँ, ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला।
1: लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया, दुबे जी वाला।
0: हाँ, वो अच्छी बन पड़ी। और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट हो जाती हैं
1: जी।
0: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म, मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको
1: जी,
0: उसमें दो फिल्मों को बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम। ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफी घुमा हूँ, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी, वो काफी रही है फेस्टिवल्स में।
1: उसमें आप ऑटो वाले बनते हैं?
0: हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन दो फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा है।
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे। गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे जैसा व्यक्ति, तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है, लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया है, हमने देखी है उन आंखों की महक।
0: क्या बात।

0: मॉनसून वेडिंग के बाद क्या चेंज हुआ यार, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफ़ी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ, उनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूँ, उनके टाइटल जो है पढ़ना, बड़ा ऑफ बीट सी हैं सब।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहाँ पे मैं कुछ कह सकूँ।
0: ये तो आप मानिएगा कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हटकर के बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं कि बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते रहा हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी, जी,
1: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने मैं उसके लिए जा रहा हूँ। इंग्लिश फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
1: एंडी डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया है? इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया है।
1: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पर काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें वो, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इंप्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ, कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहां पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है, कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहां कि कैसे बेचना है, बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
0: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
1: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रांग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना, कुछ मुद्दों को लेकर इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है।

0: उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो क्या चीज है जो रोकती है?
1: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी,
0: हाँ
1: शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है। सिनेमा का जादू, उसका तिलस्म तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है। टिकटें महंगी हुई हैं बावजूद इसके लोग
0: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग। बड़ा फिल्में उठाए हैं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है। हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
1: विजय भाई, कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
0: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी, जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता लापता, इसकी शूटिंग चल रही है, वेस्ट इज वेस्ट, जो शूटिंग करूंगा मैं। और रिलीज होने वाली दो तीन फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैं याद रखता नहीं हूँ और उनको, चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
1: शुभकामनाएं देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूंगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग PKA नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज के

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: प्रस्तुति कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की गाए इस भक्ति गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर का गाया मिर्जा गालिब का ये कलाम।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए विशाल मिश्रा का गाया ये ओगा फिल्मी गीत। इसे लिखा है कौशल किशोर ने और धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने ही।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं समीर का लिखा ये गैर फिल्मी गीत, आवाजें ऋचा शर्मा और साबरी बंधुओं की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब का ये कलाम।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना, और आइए अब सुनते हैं संत नानक देव का ये शब्द। गायिका हैं दिलराज कौर।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

ये स्वर था आयुष्मान खुराना का और आइए अब सुनते हैं तनिष्क बागची का लिखा और संगीत बद किया हुआ ये गाफिल में गीत। आवाजें गुरु रंधावा और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यह आवाज है असलम सावरी की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित। ये पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में 2रे 1-दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लाहिलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है शराबी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महाराजा।

ये आपने फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा दे
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टोम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंच के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: will commence at 5 p.m., following which the results will be declared. In Mizoram, voting for the lone Rajya Sabha seat is also underway, with candidates from the ruling Zoram People's Movement and the opposition Mizo National Front locked in a direct contest. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today inaugurated the three-day public welfare camps in New Delhi. The camp is inspired by Prime Minister Narendra Modi's 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Talking to the media after the inauguration, Ms. Gupta said the government has organized these camps at 42 locations across the national capital. The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has directed all food business operators to use only food-grade and corrosion-resistant knives, blades and other cutting equipment in food handling and processing activities. In an advisory, the food regulator noted that some food businesses have been found using rusted, corroded, chipped, painted, damaged or otherwise unsuitable knives and cutting tools. According to FSSAI, the use of such equipment can lead to physical, chemical and microbiological contamination of food, posing risks to consumer safety. A landmark memorandum of understanding between the United States and Iran has come into effect, bringing an immediate halt to nearly 4 months of direct conflict and opening a 60-day window for negotiations on a comprehensive peace settlement. The 14-point agreement, signed electronically ahead of a planned meeting in Switzerland, establishes an immediate ceasefire, commits both sides to refrain from hostile actions, and sets out a framework for addressing long-standing disputes over Iran's nuclear program and regional security issues. In FIFA World Cup 2026, Colombia began their campaign with a convincing 3-1 victory over Uzbekistan in Group K in Mexico City this morning. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान जारी। तीनों प्रत्याशियों ने विधायकों के समर्थन से अपनी अपनी जीत का किया दावा। केंद्र सरकार झारखंड बिहार समेत देशभर के कई राज्यों में वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का करेगी निर्माण। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग ने अधिकारियों को वित्त वर्ष 2026-27 में 27,000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर रांची एसएसपी को 24 घंटे पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने का दिया निर्देश। और राजधानी रांची में 12वीं रैंकिंग नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैजनाथ राम को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को एनडीए का समर्थन प्राप्त है। झामुमो उम्मीदवार बैजनाथ राम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी जीत निश्चित है।
3: ये तो दैवी कृपा है मेरे ऊपर। शुरू से आप देखते हैं, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले हम लोग पूजा करते हैं, नॉमिनेशन के पहले भी, मतदान के पहले भी, रिजल्ट के पहले भी। ये बिल्कुल सही है और हम लोग सुनिश्चित और जीत कर रहा, यही कामना है।
2: एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी पूजा पाठ करने के बाद विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूरी उम्मीद है कि इस बार भी उन्हें झारखंड की सेवा करने का मौका मिलेगा।
4: 2008 में भी था, 2014 में भी था और इस बार भी रहेगा। जो मिलना चाहिए उससे ज्यादा आएंगे। सारे एमएलए के ऊपर मेरा आधार है और झारखंड की सेवा करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। सब लोगों का समर्थन है मुझे।
2: इधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक जनार्दन पासवान ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत का 100% दावा किया है। उन्होंने परिमल नाथवानी को 35 वोट मिलने की उम्मीद जताई। इधर लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने भी परिमल नाथवानी

0: कि जीत को पक्का बताया।
1: जीत के प्रति एकदम 100% आश्वस्त है। 5 बजे के बाद आकर बता देंगे हम। अभी हड़बड़ी मत रख, नाथवानी जी अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे है। 2-2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं वहाँ, तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि जीत के प्रति हम लोग एकदम 100% आश्वस्त है।
0: केंद्र सरकार झारखंड बिहार समेत देश भर के कई राज्यों में वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने विभागीय अधिकारियों को वित्त वर्ष 2026-27 में 27,000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने राजस्व संवर्धन, खनिज नीलामी और अवैध खनन नियंत्रण के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिला खनन पदाधिकारियों को संशोधित नियमों के अनुसार कार्रवाई करने और जिला स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित बैठक करने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपने आदेश में रांची के एसएसपी को मंदिर परिसर के बाहर 24 घंटे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया है। अदालत ने 23 जून तक इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा। 730 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाला मामले में आरोपी अमित गुप्ता ने औपबंधिक जमानत देने का आग्रह करने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान याचिका इसलिए खारिज कर दी क्योंकि रिम्स की ओर से निचली अदालत को बताया गया था कि रिम्स में इलाज की पूरी व्यवस्था है। बता दें कि अमित गुप्ता ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए रिम्स की जगह कहीं बाहर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए औपबंधिक जमानत याचिका दायर की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल उन्मूलन नक्सल मुक्त भारत अभियान का सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रभावित क्षेत्र के लोग केंद्र सरकार की इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं।
2: पहले और अभी में बहुत ही अंतर आया है क्योंकि इससे पहले हमारे गांव के लोग बहुत ही डरे सहमे रहते थे और कब क्या हो जाएगा किसी को अंदाजा ही नहीं था। हालांकि कुछ महीना से देखा जा रहा हमारे क्षेत्र में जो गतिविधियां थी नक्सलियों का वो भी थम सा गया है और विकास का गति तेज हुआ है और इससे हम सभी बहुत ही खुश हैं।
0: झारखंड में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल उद्योग को अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी पूर्वी सिंहभूम जिला उद्योग केंद्र के जीएम रविशंकर प्रसाद ने बिष्टुपुर चैंबर भवन में आयोजित हस्तशिल्प निर्यात विपणन जागरूकता कार्यक्रम में दी। उन्होंने उद्यमियों को इस सब्सिडी का लाभ उठाने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जामताड़ा में उत्साह का माहौल है। महिलाएं योग अभ्यास केंद्रों से जुड़कर नियमित योग अभ्यास कर रही हैं। जामताड़ा के कोट रोग योगाभ्यास केंद्र की संचालिका प्रीति सिंह ने बताया कि महिलाओं का मानना है कि स्वस्थ जीवन शैली में नियमित योग अभ्यास अत्यंत जरूरी है।
3: पहले योगा के प्रति लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी।
0: आप टाटा जूलॉजिकल पार्क में 16 वर्ष

अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत के बाद उसी के साथ दक्षिण अफ्रीका के प्रीटोरिया से 2011 में लाए गए 17 वर्षीय अफ्रीकी शेर की हालत भी चिंताजनक है। टाटा जू के निदेशक डॉक्टर नईम अख्तर ने बताया कि शेर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और इलाज जारी है। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर से पहले तक मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक गिरकर 77,051 पर और निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,050 पर था। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। राजधानी रांची में 12वीं रैंकिंग नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप कल से शुरू हो गई। खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने नव निर्मित अत्याधुनिक स्केटिंग रिंक का उद्घाटन कर पहली रेस को हरी झंडी दिखाई। उद्घाटन समारोह में ओलंपियन अनीश राज और के शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान जारी। तीनों प्रत्याशियों ने विधायकों के समर्थन से अपनी अपनी जीत का दावा किया। केंद्र सरकार झारखंड बिहार समेत देश भर के कई राज्यों में वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का करेगी निर्माण। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग ने अधिकारियों को वित्त वर्ष 2026-27 में 27,000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर रांची एसएसपी को 24 घंटे पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने का दिया निर्देश। और राजधानी रांची में 12वीं रैंकिंग नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहां गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी, मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पत्नी और बेटी के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो यह है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में, और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए सर आंखों पर। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामे और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लगी जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पाकिजा का चलो दिलदार चलो तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा और जिस गली में तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौका में संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है। इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय हैं। और चप्पू चलाता मांझी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से ही हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु इस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं और वो भी जबकि हम केवल इतने शब्दों के बीच जीवन नैया पे ही उलझे रहेंगे, फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है, शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है, लेकिन उसकी असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक है। मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर के अथाह पानी की अनंत गहराई में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है। बहुत सुंदर, आपने अब सभी ने अपनी इबारत हमें लिख भेजी है। मन तो करा है कि इन इबारतों को पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीतमय भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, जरा खंगालिए है।

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था। पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज्यादा हैं, जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। माँ जी नैया ढूंढे किनारा, इस गीत से हमें बेहद मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना

जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था। उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूँ और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ। क्या बात है, थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहां घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया मांझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है, मांझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ जहाँ नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे जमाने में गंगा नदी पर एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी। उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी? याद तो है लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं, ये तो अब आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की। वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था। पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर भेंट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हों लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का, नदिया चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है, आदमी कितना ही हताश परेशान हो उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है, कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार साहब की बोल है, हेमंत कुमार साहब की धुन।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी, एक गाना जो अभी आप सुना रहे हैं, वो शाम कुछ अजीब थी मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया, फिल्म का शीर्षक, गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि परदेशियों से ना आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसलवर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे, फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है। सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं। एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना? वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी भी है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है, सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही हैं उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला, जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़ मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला।

अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई है, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे, ठीक है? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है।

वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो, लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग। क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ, फील ज्यादा कर रही हूँ। हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जलतरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे जरूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी, मथुरा, थाईलैंड, फुकेट, दुबई, यूएसए, नायगरा फॉल, पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव। बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं, इतने सारे गीत हैं, किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस, गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार? अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है।

स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री

0: परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि

0: उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य करने के औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2000 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत

0: शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा, दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय और भारत ने हॉकी एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश। इसके
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर हैं लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम दो दिल।

0: मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ
2: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। सदन के सभी 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। अंतिम वोट झामुमो नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार ने डाला, जबकि उनसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मतदान किया। अब सबकी नजरें नतीजों पर टिकी है। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और 7 बजे तक अंतिम परिणाम आने की उम्मीद है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की किस्मत दांव पर है। 81 सदस्यीय विधानसभा में जीत के लिए 28 प्रथम वरीयता मतों की जरूरत है। इस बीच कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने दोनों सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास विधायकों का पूरा बहुमत और जादुई आंकड़ा मौजूद है।
3: पूरा हमारा गठबंधन 100% जीतेगा, राजद 100% साथ है। और आज देश में भाजपा के कुशासन और भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में यदि कोई एक पार्टी सशक्त है तो कांग्रेस आई है। झारखंड को व्यापार न समझे, राजनीति सेवा है।
2: दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बावरी ने इस दावे को खारिज करते हुए एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत की बात कही है।
4: आज जिस तरह से हालात है झारखंड के, तो उसको ठीक करने का एक अवसर और निश्चित रूप से मोदी जी को मजबूत करने का अवसर भी उनके पास है। इस बार झारखंड में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को समर्थन दिया है, वो पुलिस प्रत्याशी जीतेगा।
2: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 3 दिन बाद होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थियों को तनाव मुक्त रहने का संदेश दिया है। NTA ने सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा का आश्वासन देते हुए नकल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। छात्र मदद के लिए मानस हेल्पलाइन 1416 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जुलाई और अगस्त महीने में आर्टिजन्स मेले का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त हेमंत सत्ती की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह मेला 13 से 15 जुलाई और 5 से 7 अगस्त तक झील परिसर के ओपन एम्फीथिएटर में लगेगा। मेले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित जूट उत्पाद, सोहराई कला, काष्ठकला और हस्तशिल्प सामग्रियों के बाजार को बढ़ावा देना है। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। DSP कैलाश प्रसाद महतो के नेतृत्व में पुलिस ने सारवा क्षेत्र से 4 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी फ्लिपकार्ट, गूगल पे और PM किसान योजना के नाम पर फर्जी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे। ये आरोपी मोबाइल हैक करने के लिए APK फाइल भेजते थे। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। सरायकेला खरसावां में पुलिस ने बंद पड़े अभिजीत कंपनी प्लांट से लोहा चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुभव भारद्वाज ने बताया कि बुरुडी स्थित प्लांट परिसर में छापेमारी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मौके से चोरी में इस्तेमाल होने वाले 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर, रेगुलेटर और भारी मात्रा में लोहे का सामान बरामद किया है।
5: जानकारी के बाद टीम गठित हुई और वहां पर जाकर छापेमारी करके 6 चोरों को जो है उन्होंने पकड़ा है और उनके पास से चीजें बरामद हुई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर था, गैस कटर था, लगभग जो है 20 से 22 फीट का लोहा उन लोगों

0: चोरी किया था ईवीएम, कीमत जो है उसमें लगभग 40,000 लगभग है।
1: रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीमों का दबदबा कायम है। पहले दिन के लीग मुकाबलों के बाद भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। महिला टीम ने अपने पहले कड़े मुकाबले में बांग्लादेश को और दूसरे मैच में श्रीलंका को हराकर लगातार 2 जीत दर्ज की। वहीं पुरुष टीम ने भी अपना दबदबा दिखाते हुए बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को सीधे सेटों में शिकस्त दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। बस सखी सहेली के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार, हमारी बहुत सारी सखियां समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की, एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका है।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका?
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे?
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे, और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो भी
1: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं। ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में। और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी और अपनी माँ के साथ जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहाँ का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना, तो जब आप उस चीज को गाते हैं तो वो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल, और वो पूरा जो माहौल था ना, वो बचपन से उनको मिल गया था। और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि 5वीं कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो पहली छात्रा।
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है तो, और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गाँव से बहुत दूर था, और गाँव के स्कूल में 5वीं कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी। यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई इतनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के जमाने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खासतौर पर ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ। और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहाँ उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना, तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी।
0: और वो ए श्रेणी की कलाकार थी।
1: देखिए, मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डर और फोन करना, ओ सियाली साली रुकमा, पारा भीरा जदियो और देवारा जारेजू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताई भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
0: जी और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद

0: देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू है वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देख कर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल। हमें किसी ब्रांड नेम का, ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम निकाल, कई लोग निकालते हैं, तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज
1: बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे, तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीजें हम खरीद सकते हैं ना, तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में उसे वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं, वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़कर ही
1: पढ़ना चाहिए,
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना हो। ताकि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देखने देने के लिए कोई चीज ले रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है, तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं, तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल। और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले, तो जरूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर, वहां से खरीदें।
0: बिल्कुल। देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था।
1: बिल्कुल।
0: इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है।
1: बिल्कुल.
0: सेल देख कर खरीद ली जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था. खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देख कर घबराइए मत, अभी तो उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजा कर ही करिए. जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है. और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है. ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए.
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़

0: होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये
1: हाँ
0: काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है,
1: हाँ
0: घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध, दालें, सब्जियां, ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो
1: बिल्कुल।
0: सोच समझ कर ही
1: और
0: आपको करना
1: बहुत सारे
0: है।
1: लोग बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी चीज़ें जो इतनी ज़रूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे,
0: जी
1: बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें पकी हुई जैसे इन्होंने बताया वो चीज़ें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षाएं यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीज़ों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया।
0: जी

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें। और जैसा कि आपने बताया था कि पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
0: देखिए बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब ही आती हैं।
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं जो उनको कभी पछतावा हो।
0: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूँ तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
1: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं। और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
0: जी बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज
1: ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शब्द कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी के जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था की।
0: बिल्कुल, और लंगर का खाना चंचली इतना इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
1: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है। वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
1: गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल, गीत सुन लेते हैं।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास, हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर।

0: कुछ लिख डाला है भाई।
1: जी
0: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
2: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
0: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
2: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही होता
0: है। हाँ, ये तो
2: है ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
0: अच्छा।
2: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास।
0: जी बिल्कुल।
2: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप है,
0: बहुत जरूरी।
2: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं, अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते
0: तो
2: हैं। तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो,
0: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि अनाज, दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंदते समय गुनगुने पानी या थोड़े से दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
2: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर, पालक, इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, जिससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगो कर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा
0: सकता
2: है।
0: अरे वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ
2: नहीं। नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
0: बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
2: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
2: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ़ डालकर मक्खन को तुरंत रखें, और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता
0: बिल्कुल।
2: है।
0: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करें आगे की।
2: जी
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले, और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल सुनते हैं।

0: आज है 18 जून, जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल। और

0: कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
1: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
0: बिल्कुल,
2: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
2: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड विधानसभा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चल रही मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सदन के सभी 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। मतदान समाप्त होने के बाद अब सबकी नजरें शाम 5 बजे शुरू होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि शाम 7 बजे तक चुनाव के अंतिम नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। मतदान समाप्त होने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भरोसा जताया कि निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को जरूरी आंकड़ों से अधिक मत मिलेंगे और वे भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। इधर निवर्तमान सांसद दीपक प्रकाश ने भी परिमल नाथवानी की जीत का दावा किया है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और विधायक स्टीफन मरांडी ने साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत में कोई संदेह नहीं है और उनका गठबंधन नतीजों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। झारखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित पुलों के ढहने के मामले में सचिव द्वारा शपथ पत्र दाखिल नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रांची से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए दो नई ट्रेनें चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसका आधिकारिक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। बेंगलुरु में चल रहे रेलवे के विकास कार्य पूरे होते ही अगले महीने इन नई ट्रेनों के परिचालन की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने रांची समेत 17 जिलों में आज और कल भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद और देवघर जैसे जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की प्रबल आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी। मैम मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5,000 की समथिंग है मैम
0: और पैदावार क्या होती
1: जी।
0: है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत
1: जी जी
0: रिच
1: मैम बहुत
0: प्रोटीन
1: बड़ा।
0: होता
1: जी
0: है।
1: जी मैम
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का
1: हाँ
0: सिर्फ?
1: मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूं धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस
1: जी
0: समय
1: जी
0: आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग
1: जी
0: आपके
1: मैम,
0: पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ
1: और
0: चार
1: अभी
0: पांच पेड़?
1: जी
0: भाई हमने
1: बस
0: तो
1: 4-5 ही।
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं मैम, गांव में तो बहुत है लेकिन हम खेत पे लगाए हैं मैम इतने 5-6 पेड़।
0: अच्छा, जी बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए,
1: देवासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में, ऐसा गाना
1: नहीं
0: क्यों?
1: नहीं मैम तरफ नहीं, पसंद नहीं है मैम ऐसा
0: अच्छा
1: कुछ
0: अच्छा जी,
1: नहीं।
0: एक समय
1: जी
0: जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत
1: जी
0: मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये
1: ओके।
0: गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गांव डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गांव, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गांव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं, और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गांव में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टेल मार्बल और सीटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाती है वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी होती है, उनको ये
0: 48
1: नॉर्मल सी लगते
0: जी,
1: हैं।
0: तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे नदियाँ हैं। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्थर की तरह की नदियाँ हैं, जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है
1: आपको
0: कि
1: सबसे मान लीजिए,
0: वो,
1: आपको पता है ये पहलगाम है, साउथ
0: हाँ,
1: कश्मीर में पड़ता
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम
1: है,
0: ठंड
1: बहुत
0: के
1: ठंडा
0: मौसम
1: पानी है।
0: में गए थे। अच्छी बात यह है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए, इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पैदा पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने, बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है
1: वो। क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास, वो तो आना जाना रहता ही रहता है।
0: जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहां तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं, और दूसरी बात ये है कि शुरू से ही मेरे को लगाव है।

0: गाना पिक्चर पे क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 60-62 से ही।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे,
1: यानी
0: लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी।
1: अच्छा।
0: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया और फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
1: अरे वाह,
0: वाल रेडियो।
1: क्या बात है। तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
0: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
1: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
0: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वाल वाले रेडियो बनाते भी थे।
1: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वाल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
0: हाँ, 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
1: जी जी। तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
0: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले। अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
1: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
0: सुनना तो नहीं रहा, अब तो सुनना तो और ज्यादा हो गया थी, क्योंकि पहले आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारतीय आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
1: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
0: और हाँ, मोबाइल।
1: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी।
0: दिक्कत होती थी, हाँ, इधर से उधर तक नहीं लगता था
1: जी। लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
0: हाँ, वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बाटी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम समा, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का,
1: बिल्कुल
0: हारमोनियम इतने अच्छे लगते।
1: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: बोल जलंधर पंजाब से।
1: करणवीर सिंह, जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
0: बिल्कुल ठीक सर, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी 2 दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते शाम तक बारिश हुई।
1: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
0: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, जो अभी कुछ राहत मिली है पहले से।
1: तो
0: आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
1: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
0: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
1: क्या बात है,
0: तो आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
0: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया सुनते।
1: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
0: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
1: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
0: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख।
1: हाँ।
0: वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने। बस इतनी जी 2 लाइन बोलनी थी।
1: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: और मक्खन घी दही सब कुछ।
1: क्या बात
0: है,
1: है
0: फिर तो।
1: वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
0: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है। गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास 4 फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये 4 फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया और धान हो गया।
1: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
0: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया है ना हमारे इधर, भुट्टा हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं चारा बन जाता है।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
0: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
1: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
0: जी देखी है जी मैंने फिल्म।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकीज़ा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है
1: जी।
0: आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है। और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें। रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसकी खासियत क्या होती है, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौनी जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे तीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम तीली पे लगा, मतलब उसमें
0: वो जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ, वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
1: चलिए, आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
0: बहुत शुक्रिया। सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं, फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक से, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: जी मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता
1: अपना
0: रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी,
0: नमस्कार। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टहके तो अच्छा रहे,
0: हाँ।
1: लेकिन ये पक्षी है हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर, लेकिन अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: हाँ। उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है। वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल
0: आजाद
1: बिल्कुल
0: रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन
1: बिल्कुल
0: होता होगा।
1: बिल्कुल ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और
0: अरे वाह,
1: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: लगता है।
0: वाह,
1: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब अब दाना डालते, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है। तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने? मोर का नाचना बड़ा
1: बिल्कुल
0: सुंदर लगता है ना।
1: बिल्कुल, मोरों के बीच में गांव में
0: हाँ
1: भी रहते
0: हाँ
1: थे
0: हाँ
1: और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में ज्वार है, बाजरी है,
0: ये सब।
1: लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं। और
0: अच्छा।
1: वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, ज्वार, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है तो।
0: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गौरैया आती है क्योंकि?
1: बिल्कुल, आज नहीं तो चकली का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा
0: हाँ
1: गांव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है,
0: हाँ
1: अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं क्योंकि?
1: ममता जी बहुत बड़े लोग हैं, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत बड़े लोग हैं, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए तो हम जी रहे और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये
1: जी। जी
0: जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है, जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है, लेकिन नीचे से ठंडा रहता है, ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है घर
1: नहीं,
0: के?
1: नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है।
0: जी, और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे वो भी आपको पता ही होगा ना
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारी का बोलते हैं, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती है, रेगिस्तान में चली जाती है।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठाकर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
0: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडीहा जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है
1: जी
0: आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी, बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपने बेटे के लुक को लेकर।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। कौन से आम हैं,
1: जी
0: कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद का। इधर हमारे पूर्वज जो है ना, यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। 10 आम? अब यहाँ महानगरों में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहां पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहां तरसते थे, हम आम खाने के लिए।
0: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने
1: एकदम
0: कहा
1: सही
0: कि
1: बात है
0: आपने के पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़
1: जी।
0: पौधा लगाया है,
1: मैं
0: आपकी
1: अपने
0: आगे
1: बाड़ी,
0: आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है,
1: जी
0: बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ, लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियां होती हैं, जामुन के गुठले होती हैं, आप वहां पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहां पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंगूर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी, बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है?
1: जी, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे टॉवेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। सब्जी के जो छिलके होते हैं
1: जी
0: उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद
1: जी
0: बनाए जा सकते हैं ना, अगर आप
1: जी
0: बागवानी
1: जी
0: करती हैं तो।
1: जी और हमारे इधर तो हम लोग गांव में हैं तो घर में जैसे कि गाय है, भैंस है, तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे कि गड्ढा खन के मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए, खेतों के लिए डालते हैं
0: ये तो बहुत
1: खाद
0: बढ़िया
1: के
0: खाद
1: रूप
0: होता
1: में।
0: है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी
1: जी
0: होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: आपके
1: जी
0: गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की, बताइए? कौन से पेड़ पौधे हैं वहां पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ तो धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम
0: तो
1: लोग।
0: आपके
1: जी
0: यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ
1: होता था जब
0: करता था?
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते हैं ना, उस टाइप का था
0: चक्की जात वगैरह,
1: उसमें। जी
0: चक्री है ना?
1: जी
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी जी जी मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 2867-0288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान समाप्त होते ही दोनों खेमों में बयानों का दौर तेज हो गया है। झामुमो के वरिष्ठ नेता स्टीफन वरांडी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत पूरी तरह तय है। दूसरी ओर रांची के विधायक सीपी सिंह ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार परमल नाथवानी की जीत को 100% निश्चित बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और आज सुप्रमुख सुदेश महतो ने भी परमल नाथवानी की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि सूर्यास्त के साथ ही पूरी चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी। सुदेश महतो ने भरोसा जताया कि सभी सहयोगी दलों का मजबूत समर्थन परमल नाथवानी के पक्ष में है। मतदान के दौरान सभी की निगाहें जेएलकेएम नेता और डुमरे विधायक जयराम महतो पर टिकी रही। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा कि उन्होंने झारखंड और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान किया है। सिमडेगा पुलिस ने गांजा की अवैध तस्करी के मामले में ओडिशा के कंधमाल निवासी मुख्य तस्कर अश्विनी कुमार दिग्गल और फरिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। इस साल 21 मार्च को बिहार के एक युवक को 8 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था। गिरफ्त में आए उस युवक के निशानदेही पर पुलिस ने ओडिशा के इस बड़े सप्लायर को दबोचने में सफलता पाई है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज किस्को प्रखंड के जनवल गाँव का दौरा किया। यहाँ उन्होंने किसान चमरू महतो द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत की जा रही आम की बागवानी का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक बहुफसली खेती यानी इंटरक्रॉपिंग मॉडल को अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल

ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना सवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाते।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर।

सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद फखरुल हसन बना रहूंगा इस सभा में आपके साथ रात्रि 11:10 तक। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बारी। चर्चा होगी बीज उपचार की विधि एवं उसके लाभ पर। साथ ही चर्चा में सुनिएगा बरसाती सब्जियां की खेती। भेंट वार्ता आप सुनेंगे कृषि में जैव विविधता पर। भेंट वार्ताकार हैं दिलीप कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र चियां की। भेंट करता हैं संतोष कुमार। शाम 6:30 पर कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा किसान वाणी। चर्चा होगी समसामयिक कृषि कार्य पर। आज की बात में अंतर्वर्ती खेती के अनेकों लाभ। भेंट वार्ता आप सुनेंगे धान की सीधी बुआई पर। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, कृषि विशेषज्ञ। भेंट करता हैं संतोष कुमार। आज का मौसम, आज का बाजार भाव और आज की नसीहत में आप सुनेंगे फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर।

शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग का आनंद आप लेंगे। शाम 7:45 पर कार्यक्रम होगा उजाले की ओर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता जल जंगल और जीवन एक अभिन्न संबंध। वार्ताकार हैं पूनम सहाय शांतिपुरी डाल्टनगंज से। शाम 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनेंगे। 8:10 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम भाग 18। इसे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित करेंगे।

8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेज़ी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

आज की शाम युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोहम्मद फखरुल हसन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप बाखैर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और मस्त रहें। इसी कामना के साथ चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे सफलता के लिए आवश्यक है मस्तिष्क पर नियंत्रण। इसी कार्यक्रम में राजीव शरण की वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा योग एक विज्ञान और कुछ मनोरंजन भी हम आपका करवाएंगे फिल्मी गीतों के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। जी हाँ दोस्तों, कठिन क्षणों में अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना आसान तो नहीं होता, लेकिन हाँ, आप यदि ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो कोई भी दुख आपको अधिक समय तक परेशान ना रख सकेगा। आप स्वयं में अद्भुत क्षमताएं अनुभव करेंगे। आपकी सोई हुई शक्तियां शने शने जागृत अवस्था की ओर जाने लगेंगी। याद रखिए दोस्तों, वो व्यक्ति उतना ही अधिक महान एवं सफल होता है जो दुखों का साहस से धैर्यपूर्वक सामना करता है। दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो लोग ये समय समझदारी से बिता लेते हैं वे स्वतः ही सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों, उस पर उसके अपने अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन कभी कभी उससे जुड़े लोगों के द्वारा किए गए किसी कार्य की अच्छाई या बुराई का भी उस पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कब आपके जीवन में दुख के पल आ जाएं। हो सकता है कि आप आसानी से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, आशाओं की ज्योति अपनी आँखों में लिए प्रसन्न हैं, लेकिन तभी कोई ऐसा व्यक्ति आपको दुख के सागर में ढकेल देता है जिससे आप अत्यधिक प्रेम करते हैं। ऐसे क्षणों में बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। यही समय आपके धैर्य की परीक्षा और आपके मानसिक नियंत्रण की क्षमता को दर्शाने वाला होता है। दोस्तों, ये तो तय है कि समय के साथ आप उस दुख से उभर तो जाएंगे ही, लेकिन यदि आपने उन कठिन परिस्थितियों में स्वयं पर नियंत्रण ना रखा तो उस समय कभी वापस ना आएगा जिसे आप दुख में डुबोकर खो चुके होंगे। ये तो आपकी दोहरी हानि हुई, दुख भी सहा और समय भी नष्ट किया। इस रहस्य को ना समझने के कारण ही व्यक्ति प्रायः अपनी सफलता का मार्ग स्वयं ही कंटकयुक्त एवं लंबा बना देते हैं। भगवान राम को ईश्वर के सदृश पूजा जाता है, क्योंकि जो परेशानियां श्री राम जी ने सहन की थी, हमारी आपकी परेशानियां तो उनके सामने कुछ भी नहीं। वस्तुतः सुख और दुख तो दो ऐसे एहसास हैं दोस्तों जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। जो लोग धैर्य और आत्मविश्वास से पूर्ण नहीं होते वे सुखों में तो अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लेकिन दुखों में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन्हें कोई दूसरा मार्ग नज़र नहीं आता। वे ये सोचकर हाथ पर हाथ थक हार कर बैठ जाते हैं कि शायद उनकी किस्मत को यही मंजूर था। वे नहीं सोचते कि व्यक्ति अपनी किस्मत अपने कार्यों से जैसे चाहे वैसे मोड़ सकता है। इस एक भूल के कारण वे स्वयं ही अपनी असफलता का मार्ग खोल लेते हैं, जबकि समझदार लोग इस सत्य से परिचित होते हैं कि सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, उन्हें दोनों से ही सामना करना है। वे लोग सुख के क्षणों में आनंद की अधिकता से पागल नहीं होते और दुख के क्षणों में अपनी किस्मत का रोना रोकर थक हार कर नहीं बैठ जाते, बल्कि उनसे उबरने की कोशिश करते हुए सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। वे सुख एवं दुख में एक सा ही व्यवहार करते हैं। उन्हें अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करना आता है। वे भावनाओं में फंसकर समय का दुरुपयोग नहीं करते। प्रत्येक स्थिति में उनकी आँखें अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का कथन है,
सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और इच्छा रखो। प्रयत्नशील आत्मा कहती है कि मैं समुद्र पी जाऊंगी, मेरी इच्छा से पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति एवं इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। बेशक दोस्तों, एक बार एक महात्मा के पास एक व्यक्ति आए और कहने लगे, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ परिस्थितियों के चलते मेरे जीवन में अचानक ही इतने गम आ गए हैं कि मैं हर समय बेचैन रहता हूँ। रातों में नींद नहीं आती, आँखों से आंसू नहीं थमते। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कभी कभी तो लगता है कि आत्महत्या कर लूँ। महात्मा जी ने कहा, वत्स, इस दुनिया में आत्महत्या से बड़ा पाप तो कोई है ही नहीं। अपने कठिन समय का साहस से सामना करो, प्रसन्न रहने का प्रयास करो, क्योंकि जिस स्थिति में तुम स्वयं को बताते हो उससे तुम्हें कोई लाभ तो होने वाला है नहीं। अभी तो तुम केवल दुखी हो, लेकिन यदि तुमने ये समय यूं ही गुजार दिया तो बाद में पछताओगे भी। प्रत्येक मुसीबत का सामना इंसान को हंस कर करना चाहिए। याद रखें, सोने को अग्नि में तपाने पर ही वो कुंदन बनता है। व्यक्ति के आंसू थम गए, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक लौट आई। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मुसीबतों से हार मानने के बजाय उन पर विजय हासिल कीजिए। सफलताएं ऐसे लोगों का ही वर्णन करती हैं। साहित्यकार शमशेर जी की ये कविता ऐसी है, स्थितियों में व्यक्ति को दिशा निर्देश देती हैं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। बेशक दोस्तों, तो हमें दोस्तों अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए और सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और एक दिन यकीनन मंजिल हमें अवश्य मिलेगी। बस अपनी कोशिश को हम जारी रखें। तो दोस्तों, ये हुई कुछ बातें। चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा नगमा।

दोस्तों, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो जीवन में जो है हमें योग को भी जीवन में स्थान देना चाहिए। और इसी पर आइए राजीव शरण की वार्ता सुनते हैं। विषय है योग एक विज्ञान।

नमस्ते। तो यह हमारी आत्मा किसी दूसरे शरीर को धारण कर लेती है और इस शरीर को शमशान घाट में अंत्येष्टि कर दी जाती है। यानी हमारे जीवन का आधार ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हमारे आत्मा और शरीर को जोड़ के रखता है, एक धागे का काम करता है। तो ये शोध द्वारा यह निष्कर्ष निकल जा चुका है कि ऑक्सीजन का विशेष महत्व तनाव के क्षणों में, तनाव के क्षणों में अब क्या होता है, अब देखिए थोड़ा आपको, क्योंकि योग मात्र कोई अंधानुकरण का विषय नहीं है, योग इज अ कंप्लीट साइंस। इसलिए आपको हम थोड़ा विज्ञान के माध्यम से भी इस विषय को समझाना चाहेंगे कि जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो तनाव के क्षणों में क्या होता है, जो हमने आपको इंडोक्राइन सिस्टम में जो एक ग्रंथि का नाम लिया था वो ग्रंथि था एड्रेनल ग्रंथ, एड्रेनल। तो एड्रेनल जो ग्लैंड्स होते हैं उस ग्लैंड्स में एक कार्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन्स का निर्माण होता है। कार्टिसोल, ये कुछ नाम है अलग अलग। आप, हमने कहा ना कि जब आप नाम सुनते हैं थोड़ा ज्यादा भय में आ जाते हैं, आपको भय में आने लाने का हमारा उद्देश्य कतई नहीं है, परंतु आपको पूरे वैज्ञानिक तरीके से हम आज इस बात को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि योग एक कंप्लीट साइंस है और कैसे वो शरीर के सिस्टम को ठीक करता है। तो इसको समझने के लिए ही हम आपको बात बता रहे हैं कि जो हमारे जो कार्टिसोल नामक जो स्ट्रेस हार्मोन्स का निर्माण होता है एवं रक्त के माध्यम से वो शरीर में दौड़ने लगती है और कार्टिसोल नामक हार्मोन में कार्बन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन एक प्रकार की गंदगी है। जब हम श्वास भी छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन जो है सो कार्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन्स के माध्यम से शरीर के भीतर निर्माण होती है, वो एक प्रकार की गंदगी है। और जब शरीर में ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण माने ऑक्सीडेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइडेशन, ये दोनों क्रिया में जब संतुलन रहता है तो जीवन में शांति रहती है, सकारात्मकता रहती है। जितना लिया उतना दिया तो सब ठीक रहा, ज्यादा ले लिया दिया कम तो गड़बड़ी पैदा हो गई। तो ये संतुलन बना के रखना है तो इसमें हमारी गतिशीलता ठीक रहती है, और जब असंतुलन हो जाता है तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, हम अवसाद को जन्म दे देते हैं और अवसाद कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर हम इससे उबरने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। तनाव की स्थिति में क्या होती है, आपकी हृदय गति बढ़ सकती है, आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, जो हमारा ब्रेन के अंदर का जो मस्तिष्क का तंत्रिका द्रव्य का जो बहाव है उसमें तीव्रता आ जाती है, वो अनियंत्रित हो जाता है, जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं हम लोग, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये सब एक अलग अलग प्रकार के तनाव हो जाते हैं हमारे शरीर के भीतर। इस तनाव की स्थिति

0: तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स में के सिस्टम में ये एक्यूट स्ट्रेस ये जन्म लेती है, और कुछ अवस्थाओं में या जाने अनजाने खतरा या चोट लग जाने पे या फिर अपने प्रियजनों की मृत्यु आदि का समाचार सुन लेने से फिर ये अपने भीतर में ये एक्यूट स्ट्रेस जन्म ले लेता है, और इसको हम वही कहते हैं। और प्रक्रियाएं जिनमें मानसिक अवसाद, भावनात्मक, कभी कभी आर्थिक कमी के कारण सामाजिक अपराध या प्रतिष्ठा का गिर जाने, ऐसी स्थिति में जो हम वो स्ट्रेस मिलता है उसको हम कांस्टेंट मेंटल स्ट्रेस, उसके कारण से ऐसा हमारे भीतर होता है। अब थोड़ा हम अवसाद की बात करें आज के समय में, तो जो हमारे छात्र हैं जो अध्ययनरत हैं, तो छात्रों के बीच भी एक अवसाद और एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ का कारण तो पारिवारिक होता है, परिवार में माता पिता का यदि आपस में कुछ संबंध अच्छा नहीं है, कुछ रोज झगड़े होते हैं, कुछ अच्छा वातावरण नहीं होता है, उसके कारण एक बच्चा थोड़ा तनावग्रस्त हो जाता है। कभी कभी कुछ बच्चे अपने भावनाओं को छिपाते हैं, तो छिपाने के प्रयत्न में फिर वो थोड़े तनाव में हो जाते हैं, फिर या फिर लज्जावश अपनी इच्छाओं को मन के अंदर छिपा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे मस्तिष्क के अंदर एक गांठ बन जाती है, और इसी से यह बाद में क्रोनिक स्ट्रेस के रूप में, निरंतर तनाव के रूप में, ये परिणाम के रूप में छात्रों के बीच में आता है। फिर छात्रों की और भी परेशानी है, विद्यालय में टीचर्स के साथ कुछ ऐसा कन्वर्सेशन हो गया, कुछ ऐसी घटनाएं हैं, ये खास करके ये छात्र इसको ज्यादा समझ पाएंगे, अपने भीतर उनके भीतर जो परिस्थितियां होती है वो बहुत तरह की होती है, वो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, तो फिर उसको छुपाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं फिर उससे कुछ तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो अनेक प्रकार के कारण होते हैं हमारे तनाव के, और तनाव का कारण भी जो होता है वो वही जो हमारे जो एंडोक्राइनल सिस्टम होते हैं उनमें जो स्राव होता है उसके कारण जो परेशानियां होती है उसके चलते हम लोग ठीक करते हैं। अब ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी हम यही कर सकते हैं कि आराम से छात्रों के लिए, खास करके जो छात्र के लिए है, वो आराम से इन प्राणायामों का उपयोग करेंगे, अगर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, इनका यदि प्रयोग करेंगे तो उनका भी वो तनावग्रस्त, वो तनाव से मुक्त होंगे। और वैसे तनाव शब्द को यदि हम थोड़ा सा देखें तो इसका विग्रह करें, तनाव तीन शब्द है, अगर इसको विग्रह करें तन में आव, आव मतलब इनवाइट करते हैं हम लोग, इसको हम लोग खुद निमंत्रण देते हैं, तनाव को हम खुद निमंत्रण देते हैं। जैसे ये लॉकडाउन में कहा गया ना कि जब तक आप बाहर नहीं निकले हैं कोरोना घर में नहीं आएगा, वैसे ही तनाव को जब तक आप इनवाइट नहीं करेंगे तब तक वो आएगा नहीं। अर्थात सामान्य जन तनाव जो ऐच्छिक होना चाहिए उसे हम स्वेच्छा बना दिए हैं, किसी भी बात, घटना, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, ये सामान्य मानवीय प्रवृत्ति होती है। परिवर्तन को स्वीकार करना ये जब हम अपना व्यवहार बना लेते हैं तो इससे हम तनावग्रस्त नहीं होते।
1: अभी आप सुन रहे थे राजीव शरण की वार्ता, विषय था योग एक विज्ञान, और इसी के साथ युवाणी कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतों की गिनती जारी है। शाम 5 बजे शुरू हुई इस मतगणना में चुनाव अधिकारी सभी 81 विधायकों के मतों की जांच कर रहे हैं। झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के भाग्य का फैसला कुछ ही समय में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे, जिससे देश भर के 15 लाख से अधिक लाभार्थी सीधे लाभान्वित होंगे। झारखंड में भी

0: इसके प्रादेशिक कार्यक्रमों की भव्य तैयारी पूरी है। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर विशेष जोर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने जंगल की सीमाओं के पास पत्थर खनन और स्टोन क्रशर पर रोक लगाने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी चुनौती याचिका वापस ले ली है। पाकुड़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एसपी ने जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था के कड़े निर्देश दिए। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित रोलर स्केटिंग स्टेडियम में आयोजित 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 1000 स्केटर्स ने पदक और राष्ट्रीय रैंकिंग अंकों के लिए ट्रैक पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा बीज उपचार की विधि और उसके लाभ से। ग्रामीण भाइयों, बीज उपचार बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक, कीटनाशक या जैविक पदार्थों से उपचारित करने की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य बीजों को शुरुआती रोगों, कीटों और मिट्टी जनित संक्रमणों से बचाना और फसल की पैदावार को बढ़ाना है। बीज उपचार की विधियों की अगर हम बात करते हैं तो कई विधियां हैं इसके विभिन्न फसलों और आवश्यकताओं के अनुसार। तो सबसे पहली विधि हम बात करते हैं रासायनिक विधि, जिसे केमिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें बीजों को विशेष फफूंदनाशक जैसे कार्बेंडाजिम या कीटनाशक जैसे एमिडा क्लोरोप्रेट की निर्धारित मात्रा से उपचारित किया जाता है। दूसरी विधि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी जैविक विधि है। इसमें मित्र फफूंद और जीवाणुओं जैसे ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम या स्यूडोमोनास का उपयोग किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से रोगों से लड़ते भी हैं। तीसरी विधि है ट्रेडिशनल यानी ड्रम मेथड, घड़ा या बोरा विधि। बीज और दवा को एक प्लास्टिक की बोरी या घड़े में डालकर लगभग 10 मिनट तक अच्छी तरह हिलाया जाता है ताकि दवा की एक समान परत बीज पर चढ़ जाए। अगली विधि है नमक के घोल की विधि, सॉल्ट सॉल्यूशन। धान की फसल के लिए 15% नमक के पानी में बीजों को डाला जाता है। स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाते हैं और हल्के या कीट प्रभावित बीज ऊपर तैरने लगते हैं। इस तरीके से आप बीज उपचार कर सकते हैं। एक और विधि है गर्म पानी का उपचार, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। टमाटर या गोभी जैसी सब्जियों के बीजों को कुछ समय के लिए निश्चित गर्म पानी लगभग 50°C में डुबोकर फफूंद या वायरस का नाश किया जाता है। अब किसान भाइयों, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि बीज उपचार करें ही क्यों, तो इसके क्या लाभ हैं? तो हम इसके कुछ बेनिफिट्स आपको बता देते हैं, जैसे रोगों से बचाव, बेहतर अंकुरण, मजबूत जड़ें और विकास, कीटों से सुरक्षा और लागत में कमी भी आती है। सबसे पहले बात रोगों से बचाव की, तो यह बीजों को शुरुआती अंकुरण के समय लगने वाले फफूंद जैसे जड़ सड़न, उकठा रोग से बचाता है। बेहतर अंकुरण भी होता है, जैसे उपचारित बीज अधिक मजबूत होते हैं जिससे बीजों की अंकुरण क्षमता यानी जर्मिनेशन रेट होता है वो उसमें सुधार होता है। मजबूत जड़ें और विकास, बीजों के साथ दिए गए पोषक तत्व पौधों की शुरुआती जड़ों को मजबूत बनाते हैं। कीटों से सुरक्षा भी होती है इससे, शुरुआती अवस्था में लगने वाले रस चूसने वाले कीटों और दीमक से फसल सुरक्षित रहती है अगर हम बीज उपचार पहले कर लेते हैं तो। और किसान भाइयों, स्वस्थ फसल होने से बाद में महंगे कीटनाशकों के छिड़काव का खर्च बच जाता है, यानी बीज उपचार अगर आप कर लेते हैं पहले तो इससे कई लाभ हैं। कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, हमेशा संस्तुत यानी अनुशंसित मात्रा जितनी मात्रा ज़रूरी है या दवा पे बताई गई है उसी का आप प्रयोग करें। बीज उपचार के बाद बीजों को कभी भी सीधी धूप में नहीं सुखाना चाहिए, इन्हें हमेशा छाया में सुखाएं। उपचारित बीजों को नंगे हाथों से ना छुएं, ये दस्ताने ज़रूर पहन लें।

कुछ और लाभ हम आपको बता देते हैं। बीज को कैसे उपचारित करें ये बता देते हैं आपको कि बीज को उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ को गर्म करके ठंडा होने पर उसमें राइजोबियम कल्चर और फास्फोरस ग्रहणशील जीवाणु को अच्छी प्रकार मिलाकर उसमें बीज उपचारित करना चाहिए। उपचारित बीज को छाया में सुखाकर शीघ्र बुआई कर देनी चाहिए। बीज उपचार करने से बीज के ऊपर एक दवाई की परत चढ़ जाती है जो बीज को बीज या फिर मृदा जनित सूक्ष्म जीवों के नुकसान से बचाती है। बीज की अंकुरण क्षमता को बनाए रखने के लिए बीज उपचार ज़रूरी होता है क्योंकि बीज उपचार से कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप भंडारित बीज में कम होता है। बीज उपचार में अगर आप कर रहे हैं बीज उपचार तो फफूंदनाशक कीटनाशक जीवाणुनाशी रसायनों या अन्य परजीवीनाशी कारकों आदि का इस्तेमाल कर बीज को विघलन क्षरण या अन्य बीजजनित तथा वृद्धजनित जनित विकारों से निदान प्राप्त कर सकते हैं जिससे फसल का उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है। इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो किसान भाइयों हम बातें कर रहे थे बीज उपचार की विधि और उसके लाभ की। आइए सुनवाते हैं आपको एक लोकगीत।

ग्रामीण भाइयों, अभी आप सुन रहे थे बशीर अंसारी की आवाज़ में नागपुरी गीत। आइए आपको भेंटवार्ता सुनवाते हैं। विषय है कृषि में जैव विविधता। भेंटवार्ताकार हैं दिलीप कुमार पांडे, जो कृषि विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के। बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष कुमार।

0: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैव विविधता से हमारी कृषि का क्या संबंध है, इसका हमारे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित बातें आज हम साझा करेंगे। पलामू जिला के चियांकी के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र प्रबंधक दिलीप कुमार पांडे जी से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार आपको और श्रोता बंधुओं को।
0: जैव विविधता क्या है?
1: जैव विविधता अपने आप में डिफाइंड है शब्द। जैव का मतलब होता है जिसमें जान है और उसमें विविध प्रकार का, उसका प्रकार चाहे संख्या में हो, चाहे गुण में हो, चाहे किसी और तरीका में हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रकृति में विविधता होनी आवश्यक है और प्रकृति में जितना विविधता होगा उतना ही अस्थायित्व होगा। जैसे हम लोग अपने यहाँ पे जमीन पे देखते हैं, इस धरती को बोलते हैं कि यहीं पे जीवन है, तो जीवन है चाहे पौधे में हो, चाहे पशु में हो, चाहे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं उनमें विभिन्न तरीका के हैं। तो जहाँ पे जितना विविधता होगा उतना ही ज़्यादा संभावना है, चाहे मानव के हित में हो या मानव के आगे वाली आने वाली पीढ़ी के हित की बात हो, तो विविधता का होना अति आवश्यक है और यही आधार है। तो विविधता ही प्रकृति का आधार है।
0: इसका हमारे कृषि से क्या संबंध?
1: देखिए, कृषि के क्षेत्र में जब हम लोग देखेंगे तो कृषि का सबसे बड़ा ये चीज है कि जब से मानव का विकास शुरू हुआ तब से खेती का विकास शुरू हुआ है
0: जी।
1: लेकिन पहले जब खेती होती थी तो आदमी प्रकृति के साथ खेती करता था, लेकिन हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति ऐसी बनी कि प्रकृति के साथ हम लोग तालमेल बैठा नहीं पाए। जनसंख्या बढ़ती चली गई, जनसंख्या के अनुरूप हम लोगों को भोजन की आपूर्ति करनी थी, तो हम लोगों ने मोनोकल्चर अपनाया। जैसे धान की खेती कर रहे हैं या धान में उन्नत प्रभेद है तो एक ही प्रभेद को
0: बार बार
1: करते गए, हाईलाइट करते गए। उसके जगह पे जो पहले का पुरातन आप खेती देखेंगे तो एक किसान भले छोटे पैमाने पे ही खेती करता था लेकिन वो रागी, मड़ुआ, मकई, दलहन, तिलहन सभी को करता था। लेकिन आज की स्थिति है कि धान का खेती कर रहा है तो धान की खेती कर रहा है, सब्जी में है तो लौकी की केवल खेती कर रहा है, टमाटर की खेती कर रहा है तो और उसमें भी केवल एक वैरायटी पे वो डिपेंडेंट हो जा रहा है। इसके चलते हो क्या रहा है कि खेती में लागत बढ़ रही है, किसान को सारा चीज बाजार से खरीदना है। दूसरा इसका प्रभाव ये हो रहा है कि इस पे आपको रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ रहा है। तीसरा चीज रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ये तीनों चीज के प्रयोग से क्या हो रहा है कि वातावरण पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मिट्टी, पानी, हवा तो प्रदूषित डायरेक्ट हो ही रहा है, लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि आज विभिन्न प्रकार के जीव का अस्तित्व खतरा में मिट गया है, यहाँ तक कि मानव का जीवन भी खतरा में मिट गया है, जिसके चलते आप देखेंगे विभिन्न तरीका के रोग हो रहा है, जमीन पानी में सीसा की मात्रा बढ़ जा रही है और सारे ऐसे जो है हमारे नुकसानदायक हैं, कैंसरस के कारण हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा खतरा अभी के समय में आ गया है और एक खतरा का समय जब कृषि को हम लोग देखेंगे 5000 वर्ष में जो खतरा नहीं हुआ वो मात्र 60-70 वर्ष में जो हम लोग खेती का नया मॉडर्न तरीका जिनको कहते हैं इनको अपनाने के बाद हो गई है। और यदि हम लोग जैव विविधता की तरफ से पुनर्रूप से नहीं जा रहे हैं तो हमारे अस्तित्व पे संकट है।
0: कीटनाशकों की अगर हम बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: कीटनाशक से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं यहाँ किसानों को बताना चाहूँगा, सुनने वाले श्रोताओं को, कि भारत में लगभग 170 कीटनाशक पंजीकृत हैं और उसमें से 110 खेती में प्रयुक्त होते हैं, बाकी विभिन्न उद्योग के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन उसमें से 110 खेती में प्रयुक्त होते हैं और उसमें से भी लगभग 75 कपास की खेती में, 35 जो है धान की खेती के लिए प्रयोग होते हैं और 10 गेहूं के लिए प्रयोग होते हैं।
0: अच्छा।
1: तो जो सबसे ज़्यादा हम लोग उपज करते हैं धान गेहूं, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचा गया, शिद्दत से लोग सोचे कि जब तक हम लोग विविधता फिर से नहीं लाएंगे
0: तब तक
1: मुश्किल है। और जहाँ तक खाद्य सुरक्षा की हम लोग बात करें, एक सिंपल सा यदि मान लीजिए हम लोग धान उपजा रहे हैं, धान की एक वैरायटी उपजा रहे हैं, तो बाजार में क्या होता है, किसान का लागत तो बढ़ा, लेकिन चूंकि एक ही तरीका का फसल होने के चलते यदि किसी कीड़ा का प्रकोप हो रहा है तो सारा का सारा फसल मारा जा रहा है, तो खाद्य सुरक्षा पे एक संकट आ गया
0: जी।
1: दूसरा चीज, यदि किसान अपना उपज बाजार में लेकर के जा रहा है तो एक ही तरीका का उपज होने के चलते उसको बाजार में मूल्य भी कम आ रहा है, तो आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इसके आगे जब हम लोग पोषण सुरक्षा की बात करें, तो एक तरीका का जो हम लोग बोलते हैं एक ही तरीका का चीज जब हम लोग यूज में कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं, तो पोषण सुरक्षा जैसे उसको न प्रॉपर वे में कार्बोहाइड्रेट न विटामिन न मिनरल ये सब की सही मात्रा में पूर्ति भी नहीं हो पाती है, और जैव विविधता होने के चलते प्रकृति खुद से चयन करता है। जैसे हम लोग भारत की बात करें या पलामू की बात करें, तो पलामू में हम लोग खास कर देखें, आज आप यहाँ से जाएंगे तो इतनी गर्मी पड़ रही है, आप देखेंगे कि पलाश का पेड़ आपको बहुत सुंदर हरियाली दिखेगा, बाकी सब खेत का मुरझा जा रहा है, सब्जी की खेती में पानी पटाना पड़ रहा है। तो पलाश के कुल के जो भी दलहनी कुल के वैसे पौधे हैं उनका हम चयन कर सकते हैं। आंवला का आप देखेंगे, आंवला पानी नहीं डालना पड़ रहा है, बेर है उसमें पानी नहीं डालना पड़ रहा है, लेकिन हम कुछ नया यदि सेब का यहाँ पे ये करें, तो हमने अपने क्षेत्र में विविधता नहीं लाया, हम एक मोनोकल्चर को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो विविधता क्षेत्र के अनुसार भी हमको विविधता को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, नई नई वैरायटी जो उससे है उनको अपने से भी डेवलप होने देना पड़ेगा,
0: ताकि तो एक ही खेत में तरह तरह की फसलें उगा सके,
1: वो विविधता उससे आएगी। अब विविधता आएगी तो अस्थायित्व आएगा, जैसे हम लोग कोई बीज बनाते हैं तो उसका काल होता है 8-7-8 वर्ष तक वो स्टेट में रहेगा, संतुलन रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो वैरायटी जो है नीचे गिरते चला जाता है, लेकिन जो प्रकृति के रूप से चयनित होता है उसमें अस्थायित्व 100 साल 200 साल तक रहता है, और उसका जो गुण है प्रकृति के द्वारा चयन किया हुआ है उसका आधार मजबूत होता है। इसके अलावा लोगों को आजीविका की भी सुरक्षा मिलती है, डिफरेंट तरीका का लोग खेती करेंगे, खेती में जैसे हम लोग बोलते हैं कि खेती में भी विविधीकरण आपको लाना है, जैसे खेती में विविधीकरण आपको लाना है तो फसल के साथ आप उधान के फसल जैसे फल को उपजाएंगे, फल को भी उपजाने की बात हुई तो उसमें एक लेवल पे जैसे सबसे ऊंचा पौधा, उसके बाद बीच में पौधा, फिर नीचे में ग्राउंड में मसाला की खेती, तो वहाँ पे भी विविधीकरण हम ला सकते हैं। इसके अलावा जानवर की भी हम लोग जानवर को भी उसमें लाएंगे विविधता, तो खेती में विविधता लाने के लिए हमको सारा चीज़ को लाना पड़ेगा, और उस सब सारे चीज़ को हम लाएंगे तो हमारा लागत भी कम होगा, क्योंकि एक चीज का उत्पाद दूसरे में प्रयोग होगा, दूसरे को उत्पाद तीसरे में होगा, तो हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होगा, और इसके चलते हमारी आजीविका की भी सुरक्षा होगी
0: जी।
1: और जहां तक हम लोग बोलेंगे जलवायु की अनुकूलता, तो जो हमारे पलामू का आज स्थिति आप देख रहे हैं, झारखंड की स्थिति देख रहे हैं, तो यहाँ की जो अनुकूल है तो जलवायु को भी अनुकूलता प्रदान करेगी। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कुछ ऐसे हम लोग पतझड़ वाले पेड़ यहाँ पे ज्यादा होते हैं, लेकिन पतझड़ वाले पेड़ को आप देखेंगे कि अभी उनमें पूरा पत्ती आ गया है, तो उनमें जब पूरा पत्ती आ गया आप जंगल में चलेंगे तो शीतलता प्रदान करेंगे और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो हमारे यहाँ जलवायु का भी अनुकूलता होगा, जलवायु को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आज चूंकि पेड़ में पत्ती कम होने के चलते आप देखेंगे कि गर्मी हम लोग महसूस करते हैं, तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ के जलवायु अनुकूल जो चीज था उस चीज को विविधता के रूप में हम लोग को बढ़ाना है।
0: कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के संदर्भ में किया जाता है, और इसका उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियों को संदर्भित करने हेतु किया जा सकता है, यही माना जाता है।
1: एकदम सही। मैं यहाँ पे और लोगों को एक बताना चाहूंगा कि यदि आपके यहाँ विविधता है तो फसलों में जो मधुमक्खी है, तितली है, उनके द्वारा परागण भी होता है, और आपके यहाँ विविधता नहीं है और हम कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो उनकी संख्या कम होगी, और जिसके चलते क्या होगा, फसल का उत्पादन भी कम होगा कृषि के क्षेत्र में। तो विविधता आप जितने लाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खेती में वो मरते चले जा रहे हैं, उनमें जब विविधता होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जितनी संख्या होगी उतना ही हमारा खेत जो है उपजाऊपन बढ़ेगा। तो विविधता को एक सीमित शब्दों में हम लोग नहीं मान सकते हैं, ये प्रकृति के साथ जब तक पृथ्वी है तब तक विविधता रहेगी तब तक हम टिके हैं। जिस दिन विविधता खत्म हो जाएगी हमारे पास, आप इस बात को समझिए कि एक किताब हम लोग केवल लेकर के चलें तो किताब आपके जीवन को सुधार नहीं सकता है, लेकिन एक लाइब्रेरी आप बना लें तो आपके जीवन को सुधार सकता है। तो इसी तरीका से विविधता एक लाइब्रेरी की परिकल्पना है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, कहीं के भी क्षेत्र में जब तक आप विविधता नहीं लाएंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सर्वाइव के लिए विविधता का होना अति आवश्यक है। और खेती जो कि हमारा विभिन्न तरीका के रोजगार को देता है, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, चाहे इसको हम लोग बोलते हैं आजीविका की सिक्योरिटी, चाहे जलवायु की सिक्योरिटी, तो ये सब कृषि से है। तो कृषि में भी तो विविधता बहुत जरूरी है।
0: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और जैव विविधता से संबंधित जानकारियां साझा की हमारे किसान भाइयों के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद।
2: ग्रामीण भाइयों, अभी आप भेंटवार्ता सुन रहे थे, विषय था कृषि में जैव विविधता। भेंटवार्ताकार थे दिलीप कुमार पांडे, कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के कृषि विशेषज्ञ। बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब बातें करते हैं बरसाती सब्जियों की खेती के बारे में। किसान भाइयों, कुछ दिन में बरसात आने वाला है तो हम उसकी तैयारी पहले कर लें। बरसाती सब्जियों की खेती के लिए सबसे ज़रूरी है खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था, जो आप अभी ही कर सकते हैं। इसके तहत उच्च जल निकास वाले मेड़ों पर बुआई करनी चाहिए ताकि ज़्यादा बारिश होने पर अतिरिक्त पानी नालियों से बाहर निकल सके और फसलें सड़ने से बच जाएँ। सबसे मुनाफे वाली बरसाती सब्जियों की जानकारी हम आपको दे दें। आप अपने क्षेत्र की मांग और मौसम के अनुसार कुछ प्रमुख सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जैसे भिंडी, ये सबसे तेज़ी से बिकने वाली और कम समय में तैयार होने वाली फसल है। लौकी, करेला और तुरई भी है। इन बेल वाली सब्जियों को बरसात में मचान विधि से उगाना सबसे अच्छा रहता है। टमाटर और बैंगन भी आप लगा सकते हैं। इनकी मांग बारिश में हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन इसके लिए सही फफूंदनाशक और कीट प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मिर्च भी लगाइए, ऊंचे खेतों में बुआई करके मिर्च की अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले खेत की तैयारी कर लें। पहले जुताई के समय प्रति एकड़ 3 से 4 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। बुआई का तरीका बता दें आपको, ज़मीन से लगभग 6 से 12 इंच ऊंची मेड़ बनाएं, जिसे बेड्स कहते हैं। बीज को मेड़ों पर उचित दूरी पर लगाएं ताकि जल भराव ना हो। बेसल डोज बुआई के समय में यूरिया, DAP या सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग विशेषज्ञ की सलाह से ज़रूर कर लें। रोग नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। बरसात के मौसम में नमी अधिक होने के कारण फफूंद और इल्ली का प्रकोप ज़्यादा होता है। इनसे बचाव के लिए समय समय पर नीम के तेल या उचित कीटनाशक का स्प्रे करते रहें। बरसात के मौसम में कुछ और सब्जियों के लिए बात आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने बताया, जून से अगस्त में आप भिंडी, बैंगन, टमाटर, मिर्च, लौकी, करेला, तुरई, खीरा जैसी बेल वाली सब्जियां तो आप उगा ही सकते हैं। साथ ही साथ पालक, मेथी और धनिया जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां भी इस मौसम में तेज़ी से उगती हैं। बेल वाली सब्जियाँ भी हैं, जैसे लौकी, करेला बताया मैंने, और फल वाली सब्जियाँ भी आप लगा लीजिए, जैसे भिंडी, बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च और ग्वारफली। पत्तेदार सब्जियां लगाना चाहें तो पालक, मेथी, धनिया, चौलाई लगाएं। बरसात में सब्जी उगाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। जल निकासी कर लें, मिट्टी की तैयारी कर लें, सहारा दे दें बेल वाली सब्जियों को, उपज बढ़ाने के लिए मचान या डंडों का इस्तेमाल करें ताकि फल ज़मीन पर सड़े नहीं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। बरसाती मौसम में उगने वाली सब्जियों के पौधों को कितनी धूप की आवश्यकता होती है, इस बात की जानकारी हम आपको देते हैं। अधिकांश सब्जियों के पौधों को स्वस्थ विकास और फलने फूलने के लिए प्रतिदिन 5 से 8 घंटे की धूप जरूरी होती है। कम अंकुरण के कारण कम तापमान, अधिक बुआई, गहराई में बुआई, अधिक पानी देना या मिट्टी की खराब जल निकासी हो सकती है, तो इससे अंकुरित नहीं होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो चला है। तो हम बातें कर रहे थे बरसाती सब्जियों की खेती की। कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे श्रोता भी सुन रहे थे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी। कुछ देर में हम प्रस्तुत करेंगे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी।

प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत समसामयिक कृषि कार्य से। आप सबों का स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले बातें समसामयिक कृषि कार्य की, तो मेदिनीनगर यानी पलामू और झारखंड के अन्य हिस्सों के लिए समसामयिक कृषि कार्यों में मुख्य रूप से मानसून की तैयारियां, खरीफ फसलों की बुआई और ग्रीष्म

उत्पादन सब्जियों के प्रबंधन पर ध्यान दे सकते हैं। इस समय किसान खेतों की तैयारी, बीजन और सिंचाई जैसी गतिविधियां कर लें। कुछ और जानकारी आपको हम दे दें इस मौसम की। खरीफ फसल की तैयारी जून जुलाई में करें, जैसे खेतों की जुताई करें। मानसून पूर्व बारिश होते ही खेतों की गहरी जुताई करें, ताकि धूप से मिट्टी के कीड़े मकोड़े और खरपतवार नष्ट हो जाएं। उसके बाद बात आती है बीज चयन की, तो अपने कृषि प्रखंड या कृषि विज्ञान केंद्र से प्रमाणित बीजों की व्यवस्था करें। धान, मक्का और अरहर झारखंड की मुख्य फसलें हैं, इसके बीज की व्यवस्था आप पहले कर लें। इसके बाद नर्सरी तैयार करें, धान के बिचड़े नर्सरी डालने का कार्य शुरू करें। ग्रीष्मकालीन सब्जियां जून के मध्य तक लौकी, भिंडी और मूली जैसी जायद या सब्जियों की तुड़ाई पूरी कर लें, और नई वर्षाकालीन सब्जियों जैसे करेला, हरी मिर्च, बैंगन की रुपाई करें। समसामयिक कृषि योजनाओं की ही बात आपको बता दें। सब्सिडी पर भी 20 झारखंड सरकार के लैंप्स के माध्यम से किसानों को 50% अनुदान पर उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, इस बात की जानकारी आपको रखनी चाहिए। यंत्र अनुदान भी आपको मैं बता दूं, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं आप। पीएम किसान योजना भी है, योग्य किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे लाभ मिल रहा है। उन्नत तकनीक अपनाएं, रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक कृषि यानी वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग पर जोर दें, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लंबे समय तक बनी रहे।

किसानों को आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक है कि कृषि विज्ञान की तमाम उपलब्धियों एवं समसामयिक कृषि सूचनाओं को खेत खलिहान तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचाया जाना जरूरी है। समय अविराम रूप से गतिमान है, प्रकृति के समस्त कार्यों का नियमन समय से होता रहता है, इसलिए कृषि के समस्त कार्य यानी बीज अंकुरण, पौधों की वृद्धि, पुष्पन और परिपक्वता समय पर संपन्न होती है। कृषि के कार्य समयबद्ध होते हैं, इसलिए समय पर कृषि कार्य संपन्न करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु का अंतिम माह यानी जून यानी ज्येष्ठ मास में गर्मी अपने चरम काल पर होती है। इस माह में उमस भरी गर्मी से बेचैनी और पानी बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ता है, तो देश के अनेक राज्यों में मानसून का आगमन होने लगता है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलने लगती है। तो जल संरक्षण जरूर करें, जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, जरूरी है खरपतवार प्रबंधन। धान में मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, उड़द और मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन वगैरह का और गन्ना, हरे चारे, इन सब की सिंचाई इन सब को लगाएं आप और इसकी देखभाल करें। किसान भाइयों, हम बातें कर रहे थे समसामयिक कृषि कार्य की, आइए आपको भेंट वार्ता सुनवाते हैं। उसके पहले लेते हैं एक कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से
7: किसान भाइयों, अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप तमाम किसान भाई बहनों का। और अब सुनवाते हैं आपको भेंटवार्ता। विषय है धान की सीधी बुआई। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, जो कृषि विशेषज्ञ हैं। बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
8: तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज सर्वप्रथम बातें करेंगे हम धान की सीधी बुआई की। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत से हमारे ग्रामीण बंधु हैं जो अब धान की खेती की तैयारी में लग चुके हैं, और वो जितनी अच्छी से तैयारी करेंगे और नई तकनीकों को अपने खेतों खलिहानों में उतारेंगे, उतनी ही ज़्यादा उनको फायदा भी होगा। और सीधी बुआई से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
9: नमस्कार। बहुत सारे राज्य में तो सालों भर धान की कुछ राज्य में होती है, लेकिन कुछ राज्य में जो खरीफ में मेन धान की खेती होती है, 80% धान की खेती करीब खरीफ में ही होती है। और खासकर जो झारखंड की बात करें तो यहाँ भी खेती करीब खरीफ में धान की ज़्यादा खेती होती है, और उसमें धान की खेती में किसान भाई जो है रोपा विधि से धान की खेती करते हैं।
8: अच्छा।
9: लेकिन रोपा विधि से धान की खेती करने में किसानों को उसमें जो है काफ़ी खर्च आती है, जैसे पानी की खर्च ज़्यादा आता है, श्रम ज़्यादा उसमें लगता है।
8: जी।
9: तो इससे बचने के लिए आज जो है आज का समय जो है किसानों की कम लागत में ज़्यादा मुनाफा की बात की जाती है कि कम लागत में खर्च लागत लगा करके ज़्यादा पैदा ले, तो इसमें आज जो है सीधी बुआई का तकनीक आई गई है, जो सीधी बुआई करके किसान भाई उसमें आप ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसमें काफ़ी पानी की बचत होती है, श्रम की भी काफ़ी बचत होती है। जहाँ तक आप रोपा विधि से धान की खेती करते हैं किसान भाई, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि रोपा विधि से धान की खेती करने में अगर 1 kg धान का उत्पादन लेना होता है तो उसमें कम से कम हमको 3000 से 5000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है 1 kg धान उत्पादन में। तो इसका अर्थ कि पानी की काफ़ी खपत होती है उसमें, और खासकर झारखंड के लिए हमारे पलामू क्षेत्र के लिए पानी की काफ़ी किल्लत हो रही है। तो इस को ध्यान में रख करके हमें सीधी बुआई की तरफ किसान भाई को आना चाहिए। सीधी बुआई में बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तकनीक है कि सीधी बुआई कैसे करें। किसान भाई के सवाल आते हैं कि सीधी बुआई कैसे करें, तो सीधी बुआई करने के लिए अनेकों तरीका है। जैसे पहले तो सीधी बुआई करने में जैसे गेहूं की खेती करते हैं किसान भाई, गेहूं की खेती करने के बाद या रबी की कोई खेती करते हैं, रबी खेती करने के बाद उसमें डायरेक्ट जो है धान की बुआई करते हैं। दूसरी है कि अगर जहाँ पानी की सुविधा है तो वहाँ पर जो है खेत को एक पानी दे करके उसको छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें जितने खर पतवार जो होते हैं उग जाते हैं।
10: अच्छा।
9: उसके बाद फिर उसमें पानी डाल करके उसको जो है जुताई करते हैं।
10: अच्छा।
9: जिससे कि खर पतवार निकलने की कम चांस रहता है।
10: अच्छा अच्छा, जो एक बार निकल गया दोबारा निकले।
9: जी जी, दोबारा नहीं निकलती है। तो ये दोनों विधि से भी कर सकते हैं, पलवार विधि जो बोलते हैं उस विधि से करने में खर पतवार कम आता है।
10: अच्छा,
9: है ना। तो उससे क्या है कि आपका जो खर पतवार नाशी का कम उपयोग भी करके आप सीधी बुआई से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। दूसरी बात है कि किसान भाई कभी जो ऐसे खेत में जो जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है तो धान की सीधी बुआई कर देते हैं। अच्छा, ऐसे ही बिना पटाए। तो जब बारिश होती है तो उसमें जो है धान का बीज भी उगता है और उसके साथ साथ जो है खरपतवार भी उगता।
10: अच्छा।
9: है तो उसमें खरपतवार का नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि खरपतवार का अगर नियंत्रण नहीं करेंगे किसान भाई तो उत्पादन उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण उसमें जरूरी।

0: उसमें आप या तो मैकेनिकल विधि से या फिर जो है केमिकल के द्वारा भी खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: उसमें जो अगर आप वैसे विधि से अगर लगाते हैं तो केमिकल, अगर मैकेनिकल विधि से करते हैं तो उसमें उसमें भी श्रम की संख्या ज़्यादा लग जाएगा और उसमें खर्च ज़्यादा आ जाएगा। तो कुछ लोग केमिकल का भी उपयोग करते हैं और उसके उससे खरपतवार का नियंत्रण करते हैं।
1: अच्छा
0: जैसे पेंडा मेंथिलीन है, उसका उपयोग करके जो है जो खरपतवार को का जो कंट्रोल कर सकते
1: अच्छा
0: हैं। फिर नॉमनी गोल्ड है, इसको भी उपयोग करके किसान भाई खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: दूसरी बात है कि अगर आप जो सीधी बुआई करते हैं तो सीधी बुआई करने से आपका फायदा ये है कि पानी की बचत, श्रम की बचत, और दूसरी ये है, तीसरी, कि आपका ये जो पौधा है, ये फसल जो है, करीब जो है 10 दिन पहले आपका खेत से तैयार हो जाएगा।
1: अच्छा
0: तो 10 दिन पहले खेत आपका खाली हो सकता है, तो 10 दिन का आप रबी फसल में को लगाने में आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये सीधी बुआई करने से किसानों को काफ़ी फायदा है, इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी विधि आती है कि जो सीधी बुआई करते हैं उसमें जो है बीज का जो है चुनाव भी
1: उपयुक्त हो
0: करना
1: जाता है।
0: उपयुक्त होता है, कि बीज का सही चुनाव करेंगे तो उससे आपका जो है कि फसल जो है अच्छा भी मिल पाएगा।
1: अच्छा
0: उसमें बीज का जो है, बीज का जो है आपको उपचार भी करना पड़ता है। जैसे अगर कोई बीज का आप उपयोग कर रहे हैं तो उस बीज को पहले जो है वेबस्टिन से उपचारित कर लीजिए, बीज उपचार कर लीजिए। जैसे
1: अच्छा
0: अगर पहले तो है कि उसको जो आप बीज को सीधी बुआई में ले जा रहे हैं उस बीज को पहले पानी में डाल, नमक वाला पानी में डाल दीजिए। नमक वाला पानी में डालने से क्या होगा कि जो हल्की बीज रहेगी, जो खराब बीज रहेगी, वो छाला जाएगा, तो
1: अच्छा
0: उसको हटा देना है, और जो बीज पानी में बैठ गया है उसको बीज के रूप में लेना है।
1: अच्छा
0: उसको बीज के रूप में लेने के लिए क्या करना है कि उसको फिर पानी से छान करके निकालना है, और एक दो पानी से फिर उसको धो देना है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ना रहे। और
1: अच्छा
0: उसके बाद फिर बेविस्टिन का 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से वो घोल बना करके उस घोल में उस बीज को करीब 24 घंटा तक
1: छोड़ना है
0: डालकर छोड़ देना है।
1: जी।
0: उसके बाद 24 घंटा के बाद निकाल करके छांव में उसको सुखा करके जो है फिर बीज को बुआई करना है। तो इससे जो
1: अच्छा
0: है कि बहुत सारा रोग जो है, जो बीज जनित रोग होते हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, वो जो है धान में नहीं आएंगे, जिससे कि आपका धान का पैदावार अच्छा होगा। इस
1: अच्छा
0: तरह की बुआई कर सकते हैं। तीसरी है कि तीसरी विधि से भी धान की सीधी बुआई की जा सकती है। जैसे इसको धान को अंकुरित करके भी
1: अच्छा
0: आप लगा सकते हैं धान में। तो इसके लिए जो है कि आप जो है प्लास्टिक एक ड्रम सीडर आती है उससे भी आप उपयोग करके सीधी बुआई कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: उसमें क्या होता है कि बीज को अंकुरित किया जाता है। जैसे आप बीज को 24 घंटा तक फुलाइए, फुलाने के बाद फिर उसको छान करके जो है जूट की बोरी में 24 घंटा तक उसको बांध करके रख देना है, जिससे कि 24 घंटा में छोटा छोटा उसमें अंकुरण आ जाए।
1: अच्छा
0: और उस अंकुरित बीज को फिर खेत में, जो आप रोपा विधि से जो खेत की तैयारी करते हैं उस तरह के खेत की तैयारी कर करके पट्टा दे करके बराबर करके उसमें बुआई की जाती है। तो
1: अच्छा
0: उससे भी आपका जो है श्रम में काफ़ी बचत आएगी, पानी में की भी बचत आएगी, और वो जो आपका जो उत्पादन है, उत्पादन भी देखा गया है कि जो रोपा विधि से जो उत्पादन आता है उतना ही उत्पादन करीब इसमें आता है।
1: अच्छा
0: तो वो आपका श्रम में काफ़ी बचत हो गया, उत्पादन उतना ही हुआ, तो आपका जो इनकम होगा वो बढ़ेगा।
1: और समय से पहले आप खरपतवार नियंत्रण भी
0: हाँ,
1: करते हैं।
0: नियंत्रण करते हैं इसमें। अगर इसमें दूसरी बात ये होता है कि ये लाइन से लगी होती है, ड्रम सीडर से लगाए तो लाइन से लगी होती है, तो इसमें आप जो है खर पतवार का मैकेनिकल विधि के द्वारा भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उसमें
1: अच्छा
0: कोनो बीडर दोबारा, अगर 20 दिन के बाद जो है बुआई के 20 दिन के बाद भी कोनो बीडर चला दीजिए एक बार, फिर 40 दिन के बाद एक बार कोनो बीडर चला दीजिए, तो जिससे क्या है कि जो है खर पतवार का नियंत्रण हो जाता है, और साथ साथ खेत की हल्की जुताई भी हो जाती है,
1: वाह।
0: जिससे हवा का एरेशन भी उसमें होते रहता
1: होते
0: है,
1: रहता है।
0: तो जिससे कि पौधा का बढ़ावार अच्छा होता है और उत्पादन भी अच्छा आता है। तो इस तरह से किसान भाई अगर खेत की सीधी, धान की सीधी बुआई खेत में करते हैं तो उनसे काफ़ी बचत होती है, आर्थिक लाभ होगा, और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, और खेत जो है आपका रबी फसल के लिए 10 दिन पहले आपका खाली हो जाएगा, जिससे
1: अच्छा
0: कि रबी फसल को भी अच्छा से उत्पादन ले सकें।
1: कि सीधी बुआई से जुटी हुई और कोई महत्वपूर्ण बात है?
0: महत्वपूर्ण बात यही सीधी बुआई में ध्यान देनी है कि सीधी बुआई में आपका जो है खर पतवार उसमें एक मेन प्रॉब्लम आता है, मेन इसमें है, तो खरपतवार का नियंत्रण इसमें जरूरी है।
1: अच्छा।
0: खरपतवार का नियंत्रण या तो मैकेनिकल विधि या केमिकल विधि से अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका उत्पादन अच्छी आएगा, इसको ध्यान में थोड़ा सा रखना है।
1: इन सारी बातों को हमारे किसान भाइयों को ध्यान देनी है सीधी बुआई में खास करके, और इसमें पानी वगैरह भी तो हम समझते हैं कि
0: बहुत कम लगती है,
1: बहुत कम लगती है।
0: करीब आप जो रोपा विधि से धान लगाते हैं उसमें एक केजी धान उत्पादन में करीब 3,000 से 5,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है।
1: अच्छा।
0: लेकिन आप सीधी बुआई से
1: केजी धान
0: उत्पादन में, जबकि आप अगर सीधी बुआई करते हैं तो करीब 1,500 से 2,000 लीटर में एक केजी धान का उत्पादन हो जाती है, तो इसमें पानी भी बहुत कम लगती है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगता। तो जैसे आप सीधी बुआई में क्या होता है कि धान के खेत को हमेशा पानी से समर डुबा रखते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, आप फ्रिक्वेंटली उसमें अगर पानी की सुविधा है तो शुरू में आप पानी उसको दो चार पानी दीजिए, उसके बाद फिर बारिश के पानी से ही कभी कभी हो जाती है।
1: अच्छा।
0: तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
1: जी, अब हम संक्षिप्त बातें आपसे करेंगे कोदो सामा की।
0: जी,
1: क्योंकि उसका भी समय
0: जी
1: अभी है और इस पर काफ़ी बल दिया जा रहा है कि मिलेट सामा को, इसको हमारे किसान भाई कैसे करें?
0: ठीक है, पहले किसान भाई तो सादो कोमा करते ही थे, ये सब खेती करते थे। आजकल जो है उसी का आज जो है सरकार की भी ज़्यादा ध्यान है, और मिलेट 2023 जो वर्ष मनाया गया, हमारा मिलेट वर्ष भी मनाया गया था, तो इसको विश्व मिलेट वर्ष मनाया गया था, तो इसका ध्यान में रह करके किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि मिलेट को उत्पादन ज़्यादा लें, क्योंकि इससे जो है आपके जो शारीरिक में जो पूर्ति होती है जो न्यूट्रिएंट की वो अच्छी तरह से होती है। तो सामा कोदो में ज़्यादा आपका खेत की जो मिट्टी है उसके लिए उपयुक्त है, क्योंकि पहले सामा कोदो ये सब होता था तो उसके लिए खेती उपयुक्त है, और अभी का समय उसके लिए उपयुक्त अभी लगाने का भी है, तो उसको लगा करके खेती उसमें जो है कि यहाँ की मिट्टी भी उपयुक्त है और उसमें ज़्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है। जहाँ तक पलामू के क्षेत्र है जो रेन शेडो एरिया में आता है, यहाँ पानी ज़्यादा हो नहीं पाता है, तो उसके लिए सामा कोदो जो है कि खेती बहुत उपयुक्त है। तो किसान भाई इसकी भी खेती इसी तरह से कि धान जैसा कि धान की छींटा अच्छा। विधि से कर रहे हैं हाँ। उसी तरह से उसका भी खेती कर सकते हैं,
1: लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है,
0: न्यूट्रिएंट
1: क्षमता बहुत ज़्यादा है,
0: पोषक क्षमता ज़्यादा है।
1: इसलिए हमारे ग्रामीण भाइयों को चाहिए कि सामा कोदो की ओर भी वापस
0: आ रहे हो। अब वापस लोग आ रहे हैं, इस पर कुछ लोग जागरूक
1: हैं। उसमें पानी की आवश्यकता किस प्रकार पड़ती है?
0: उसमें पानी बहुत कम की जरूरत पड़ती है, पानी बारिश के पानी से ही हो जाती है।
1: अच्छा।
0: उसमें ज़्यादा पानी की जरूरत भी नहीं है। जैसे मड़ुआ हुआ, मड़ुआ भी उसी जाति में आती है, तो पहले तो मड़ुआ काफ़ी यहाँ पलामू में भी होता था
1: जी।
0: लेकिन अब मड़ुआ की खेती बहुत कम हो रही है, तो उस पर भी सरकार का ध्यान है और उसको भी किसानों को जो है जागरूक किया जा रहा है कि मड़ुआ की भी खेती करें, क्योंकि उससे काफ़ी जो है किसानों को न्यूट्रिएंट मिलता था।
1: ये हुई बातें धान की खेती पर, और जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी। आप कार्यक्रम से जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी हमारे किसान भाई भेंटवार्ता सुन रहे थे, विषय था धान की सीधी बुआई। भेंटवार्ताकार थे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब बात करते हैं आज की बात में अंतर्वर्ती खेती के अनेकों लाभ की। किसान भाइयों, अंतर्वर्ती खेती का अर्थ है एक ही खेत में मुख्य फसल के साथ कुछ अन्य सहायक फसलों को एक निश्चित अनुपात या कतारों में उगाना। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, कीड़े और खरपतवार नियंत्रित रहते हैं, और किसानों की आय में भी 20 से 30% तक अतिरिक्त वृद्धि होती है। तो इसके कुछ मुख्य लाभ हम आपको बता दें। अतिरिक्त आमदनी और जोखिम कम होना, और वित्तीय सुरक्षा इसमें मुख्य लाभ है। मुख्य फसल के खराब होने या बाज़ार में उसका दाम कम मिलने पर सहायक फसलें जैसे दालें या सब्जियों से आपको आय का विकल्प मिलता है, अधिक मुनाफा भी होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन होने से किसानों को दोहरा फायदा, कमाई का अवसर प्राप्त होता है। फसल उत्पादन में मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है, जैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बहुत हद तक हो जाता है। दलहनी फसलों जैसे चना, मूंगफली, मटर की जड़ें हवा से प्राकृतिक नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी में जमा करती हैं, जिससे मुख्य फसल को भी पोषण मिलता है। मिट्टी का कटाव रुकना, अलग अलग तरह की जड़ें मिट्टी को गहराई और सतह से मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, जिससे भूमि का कटाव रुकता है। संसाधनों का सही उपयोग होता है, स्थान और प्रकाश का उपयोग, अलग अलग ऊंचाई और फैलने वाले फसलों को लगाने से धूप, हवा और ज़मीन का पूरा उपयोग होता है। कुछ पौधे कम पानी और कुछ ज़्यादा पानी वाले होते हैं, इससे खेत की नमी का बहुत संतुलित उपयोग होता है, यानी जल प्रबंधन भी अच्छी तरह हो पाता है। इसमें कीट और खरपतवार नियंत्रण भी कर सकते हैं किसान भाई। अंतर्वर्ती खेती से जैसे प्राकृतिक बचाव होता है, कुछ पौधों की महक से हानिकारक कीट दूर भागते हैं, यानी मुख्य फसल के बजाय सहायक फसल की ओर आकर्षित होते हैं। खरपतवार का दमन भी होता है, खेत में खाली जगह कम होने से खरपतवार आसानी से नहीं पनपते। तो इस तरह कई सारी चीज़ें हमें एक साथ इसके लाभ मिल जाते हैं अंतर्वर्ती खेती के। आज का मौसम आपको बता दें, आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 86% रिकॉर्ड की गई। इसके बाद चलते चलते बात करते हैं आज की नसीहत में, फसलों में खर पतवार नियंत्रण की।

किसान भाइयों, नसीहत में खरपतवार कैसे नियंत्रित करें फसल में? तो फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पहले और फसल के दौरान यांत्रिक, सस्य वैज्ञानिक यानी कल्चरल और रासायनिक तरीकों का सही तालमेल अपनाना सबसे प्रभावी होता है। इससे फसलों को पोषक तत्व, पानी और धूप मिलती है, इससे उपज अच्छी होती है। खरपतवार नियंत्रण के कुछ तरीके आपको बता दें, यांत्रिक और भौतिक विधि। सबसे आम और सुरक्षित तरीका है निराई गुड़ाई और गहरी जुताई, आप इसे कर सकते हैं। निराई गुड़ाई कैसे करें? खेत में खुरपी, कुदाल या व्हील हो की मदद से खरपतवारों को जड़ों सहित उखाड़ कर नष्ट करें। फसल के शुरुआती 20 से 30 दिनों पर यह बहुत ज़रूरी है। गहरी जुताई कर सकते हैं, गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें। इससे खरपतवार के बीज तेज धूप में सूख कर नष्ट हो जाते हैं। कल्चरल मेथड यानी सस्य वैज्ञानिक विधि क्या है? इसके तहत खेती के तौर तरीकों से खरपतवारों को रोका जाता है, यानी फसल चक्र अपना कर रोक सकते हैं। क्रॉप रोटेशन द्वारा एक ही खेत में हर साल एक ही फसल उगाने के बजाय फसल बदलते रहें, इससे विशेष खरपतवार नहीं पनप पाते। उचित दूरी रखें, फसलों को सही कतार यानी लाइन में बोएं और पर्याप्त दूरी बनाए रखें ताकि निराई गुड़ाई में आसानी हो। स्वच्छ बीज का इस्तेमाल करें, हमेशा प्रमाणित और खरपतवार मुक्त बीजों का ही उपयोग करें। अब रासायनिक विधि हम आपको बता दें, जिसे केमिकल मेथड भी कहते हैं। मजदूरों की कमी होने पर खरपतवार नाशक का प्रयोग काफ़ी लोकप्रिय और सस्ता पड़ता है। बुआई के तुरंत बाद फसल के अंकुरण से पहले एक दिन दो दिन के अंदर पेंडीमिथालिन का छिड़काव किया जाता है। खड़ी फसल में आप खरपतवार उगने के बाद जैसे गेहूँ में गुल्ली डंडा और बथुआ के लिए मेलसरफिरान मिथाइल का उपयोग कर सकते हैं। इसकी सावधानी जरूर रखें, अगर रासायनिक दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें और पर्याप्त नमी यानी पानी होने पर ही करें। कुछ जैविक विधि भी है इसकी। इस विधि में प्राकृतिक दुश्मनों जैसे कीड़े या सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके विशेष खरपतवारों को खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फसलों में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम का समय भी हो चला है, हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहें हमारे कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम। धन्यवाद, नमस्कार। आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: से शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना।
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
5: भाइयों बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
4: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित। झामुमो के वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने दर्ज की शानदार जीत। प्रधानमंत्री कल 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सांसद टुल्लू महतो होंगे मुख्य अतिथि। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के स्टोन क्रशर और पत्थर खनन पर रोक के आदेश को रखा बरकरार। झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर दिया जोर। राज्य के 17 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग और धनबाद सहित कई इलाकों में आज और कल वज्रपात और तेज आंधी की दी चेतावनी। और FIH महिला नेशंस कप में भारतीय टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की दीप

0: मल्लिका सोरेंग ने दागा शानदार गोल। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की दो राज्यसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस मतगणना में सबसे चौंकाने वाला मोड़ 3 वोटों का अमान्य होना रहा। अंतिम परिणामों के अनुसार विजयी प्रत्याशी वैद्यनाथ राम को 31 वोट और परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा को केवल 19 मतों से संतोष करना पड़ा। परिमल नाथवानी की जीत पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके नाथवानी के अनुभव का लाभ राज्य को फिर मिलेगा।
1: एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को और साथ ही तमाम 81 विधायकों को भी हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। तो इसे आप समझ सकते हैं, झारखंड के जो मतदाता है, खास करके हमारे जो विधायक, काफी सुलझे हुए हैं, काफी समझदार हैं। परिमल नाथवानी ने 8 से 14 और 14 से उनका कामों को लोग देख चुके हैं, उनको लोग नजदीक से देखे थे और उन्होंने भी झारखंड को देखा है और झारखंड के लोगों से भी उनका अच्छा परिचय है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे, जिससे देश भर के 15 लाख से अधिक लाभार्थी सीधे लाभान्वित होंगे। झारखंड में भी इसके प्रादेशिक कार्यक्रमों की भव्य तैयारी है। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे, जबकि बोकारो स्टील लिमिटेड के सभागार में होने वाले कार्यक्रम में सांसद दुल्लू महतो शिरकत करेंगे। गुमला के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अमित सतीजा ने आकांक्षी प्रखंड डुमरी का दौरा कर समाहरणालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण को 100% करने और डॉक्टरों की कमी दूर करने के कड़े निर्देश दिए। बच्चों में कुपोषण पर चिंता जताते हुए उन्होंने रेडी टू ईट पोषण वितरण प्रणाली को तुरंत दुरुस्त करने को कहा।
2: जो हम लोगों ने कार्य किया है नीति आयोग के तत्वाधान और जिला प्रशासन के नेतृत्व में, उसमें जो गांव वालों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें कि बकरी पालन और मशरूम की खेती और एक जो कॉम्प्रिहेंसिव विकास के तौर पे जो पहल स्कीम है, उसमें गांव वालों को देख के बहुत अच्छा लगा। गांव वालों को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलेगा।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में देश भर में 1,47,00,000 घरेलू LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर विशेष जोर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने जंगल की सीमाओं के पास पत्थर खनन और स्टोन क्रशर पर रोक लगाने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी चुनौती याचिका वापस ले ली है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
4: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित

0: आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
3: भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार।
2: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी रांची के आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध घायल हुआ है, जिसका फिलहाल अस्पताल में उपचार चल रहा है। सिटी एसपी पारस राणा ने इसकी पुष्टि की है।
6: रांची पुलिस के द्वारा जो मुख्य 3 आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया थी और जब थाना में उनको पूछताछ के लिए रखा गया था, तो उसी क्रम में जो एक आरोपी है जिसने बाथरूम जाने का बहाना किया और फरार हो गया था, और उसके पश्चात उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसने दूसरी बार फिर से उस भागने का प्रयास किया। इसमें इस बार उसने पुलिस का जो वेपन था उसको भी छीन कर भागने का प्रयास किया, और उसी प्रयास में जब पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई तो उसके द्वारा भी 2 से 3 राउंड फायर किए गए हैं। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई है, उसमें उसके पैर में गोली लगी है।
5: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने इरबा स्थित आईक्यू डिजिटल परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 22 से 24 जून तक जारी रहेगी। भाकपा के झारखंड राज्य परिषद सदस्य और गुड्डा जिले के वरिष्ठ मजदूर नेता कॉमरेड रामस्वरूप पासवान का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद आज निधन हो गया। उनके निधन पर भाकपा झारखंड के राज्य परिषद ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए पार्टी कार्यालय में झंडा झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कोडरमा जिले में तैयारियां जोरों पर है। इन तैयारियों के बीच झुमरी तलैया के रहने वाले एक दंपति की अनूठी पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रदीप सुमन और सुषमा सुमन नामक यह दंपति पिछले 22 वर्षों से लगातार योग के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इस दंपति ने अब तक क्षेत्र में 10,000 से अधिक योग प्रशिक्षक तैयार किए हैं। योगी सुषमा सुमन ने बताया कि वे विशेष रूप से बुजुर्गों और महिलाओं को नियमित योगाभ्यास करा रही हैं।
7: एक ऐसा समय था कि जब कोई योग के बारे में जानता भी नहीं था, और धीरे धीरे प्रचार प्रसार करते आज पूरे कोडरमा जिला में लगभग 10,000 से ज्यादा योग शिक्षक भी तैयार हो गए हैं, जो जगह जगह योग क्लास लगाते हैं। लगभग 22 वर्ष से मोहल्ले मोहल्ले में जा करके प्रतिदिन योग सिखा रही हूँ।
5: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत 17 जिलों में आज और कल भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद और देवघर जैसे जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की प्रबल आशंका व्यक्त की है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मुकाबले में झारखंड की दीपिका सोरेंग ने शानदार गोल दागा। दूसरी ओर राज्य की उभरती साइकिलिस्ट सरिता कुमारी का चयन वर्ल्ड स्पोर्ट्स एक्सपोजर टूर के लिए भारतीय टीम में हुआ है। वह 1 महीने तक यूरोपियन सर्किट की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित। झामुमो के वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने दर्ज की शानदार जीत। प्रधानमंत्री कल 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सांसद ढुल्लू महतो होंगे मुख्य अतिथि। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के स्टोन क्रशर और पत्थर खनन पर रोक के आदेश को रखा बरकरार। झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर दिया विशेष जोर। राज्य के 17 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग और धनबाद सहित कई इलाकों में आज और कल वज्रपात और तेज आंधी की चेतावनी जारी की। और FIH महिला नेशंस कप में भारतीय टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की दीपिका सोरेंग ने दागा शानदार गोल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कार्यकाल गरीब कल्याण, नारी सशक्तिकरण, स्वावलंबन, किसान हित, सेवा, सुशासन सहित आम नागरिकों के सर्वांगीण विकास को समर्पित रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री के 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में भाजपा के जिला महामंत्री अभय कुमार सिंह ने कहा कि
2: 12 साल बेमिसाल विकास के विश्वास के साथ जनकल्याण के लिए रहा, खास करके किसानों के लिए उन्होंने जो काम किए बहुत ही सराहनीय है। हर एक किसान को साल में 6,000 तीन किस्त में देकर उन्नत बीज, उन्नत खाद के माध्यम से कम जगह में अच्छे से अधिक फसल उपजाने का काम आज किसान कर रहे हैं, जिसमें किसान काफी खुशहाल हैं।
1: जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन की पहल पर शनिवार को समाहरणालय परिसर स्थित SGSY सभागार में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में झारखंड राज्य निर्माण में जिले के आंदोलनकारियों को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने प्रशस्ति पत्र एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि
3: इनका मूल शिल्पीकार और इनका सपना देखने वाला यही आंदोलनकारी लोग थे, जिन्होंने अपने घर परिवार अपना जीवन का परवाह किए भगे आंदोलन में कूदे थे।
1: जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर जामताड़ा के उदलबनी स्थित वृद्धा आश्रम में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने बुजुर्गों की समस्याएं सुनी और पंजीकृत करते हुए निदान की दिशा में पहल की। इस क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने कहा कि
4: कार्यक्रम के तहत सबसे पहले मेडिकल जांच कराया गया, जिसमें सभी को दवाई दी गई तथा नेत्र का भी जांच किया जा रहा है, जिसको मोतियाबिंद का उसका ऑपरेशन किया जाएगा। इसके अलावा जो है सभी का आधार कार्ड जो है वो अपडेट किया गया, और जिसका आधार कार्ड नहीं था आधार कार्ड बनाया गया, जिनको कानूनी संबंधी जानकारी दी गई और एक दो इसमें थे जो कानूनी सहायता था उनको पैनल लॉयर के अधिवक्ता को दिया गया।
1: जामताड़ा जिले में राजनैतिक एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर SIR की जानकारी देकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के कुंडहित प्रखंड में 6 जून को आयोजित शिविर में स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने SIR की विस्तृत जानकारियां दी और अभियान को सफल बनाने की अपील की, ताकि एक भी योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित रहने ना पाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि
5: SIR को लेकर के तत्पर है। SIR का जो सूची आया है इसमें नाम जो है उस नाम में अधिकांश हम लोगों का समर्थक हम लोगों का अनुयायी है, सीखा चाहता है, हम लोगों का आदमी सीधा सपन्दा है, तमाम विषयों के बारे में उतना सचेतन नहीं रहता है, इसलिए हमारा संगठन तत्पर है कि हम लोगों का नाम न छुपे।
1: प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जामताड़ा

0: जिले के गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जन औषधि केंद्र से जिलेवासी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ प्राप्त कर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इसके लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट किया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
1: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ फिल्मी नगमे।

0: पत्थर के सनम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगला गीत आई सुनते हैं लाल किला फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की है। कलाम शायर हैं बहादुर शाह जफर और संगीतकार हैं एस एन त्रिपाठी।
1: ना किसी

हम दोनों फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार जयदेव। आप सुन रहे हैं एक रंग कार्यक्रम के तहत मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ फिल्म नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत आई सुनते हैं गज़ल फिल्म से। आवाज़ जी हाँ मोहम्मद रफ़ी साहब की है, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और तर्ज मदन मोहन की।

गज़ल फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और इसकी तर्ज बनाई थी मदन मोहन ने। अगला गीत आई सुनते हैं जब प्यार किसी से होता है फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: आदमी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। इसी नगमे के साथ ही अब आज का एक रंग कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम उजाले की ओर। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं वार्ता जल जंगल और जीवन एक अभिन्न संबंध। वार्ताकार हैं पूनम सहाय शांतिपुरी डाल्टनगंज से।
1: भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति और मानव जीवन का गहरा संबंध सदियों से बना हुआ है। यहाँ जल जंगल और जीवन केवल पर्यावरणीय तत्व नहीं है बल्कि सांस्कृतिक आर्थिक और सामाजिक जीवन के आधार भी हैं। इन तीनों के बीच संतुलन ही देश की समृद्धि और स्थिरता को बनाए रखता है। प्रकृति ने मानव जीवन को समृद्ध बनाने के लिए अनेक अमूल्य संसाधन प्रदान किए हैं जिनमें जल पानी और जंगल यानी कि वन सबसे महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही तत्व न केवल मानव के अस्तित्व के आधार हैं बल्कि पृथ्वी पर समस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों के जीवन चक्र को भी संतुलित बनाए रखते हैं। जल जंगल और जीवन का संबंध इतना गहरा है कि इनके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। जल का महत्व। जल जीवन का मूल आधार है और मानव शरीर का अधिकांश भाग जल से बना है और इसके बिना जीवित रहना असंभव है। जल का उपयोग पीने, कृषि उद्योग, स्वच्छता और ऊर्जा उत्पादन जैसे अनेक कार्यों में किया जाता है। नदियाँ, झीलें, तालाब और भूजल हमारे लिए जल के प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण

और प्रदूषण के कारण जल संसाधनों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। जल का अंधाधुंध दोहन और जल स्रोतों का प्रदूषण भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जंगल का महत्व, जंगल पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वन जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख आधार है। यहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी और वनस्पतियाँ निवास करती हैं। जल वर्षा चक्र को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जल स्रोतों को संरक्षित रखते हैं। इसके अलावा आदिवासी और ग्रामीण समुदायों का जीवन जंगलों पर निर्भर करता है। वे जंगलों से भोजन, औषधि, ईंधन और आजीविका प्राप्त करते हैं। जल जंगल और जीवन का पारस्परिक संबंध। जल और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं। जंगल वर्षा को आकर्षित करते हैं और जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं, जबकि जल जंगलों के विकास और संरक्षण में सहायक होता है। यदि जंगल नष्ट होंगे तो वर्षा कम होगी, जल स्रोत सूख जाएंगे और अंततः जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसी प्रकार यदि जल स्रोत समाप्त हो जाएंगे तो जंगल भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जल, जंगल और जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बात हमारे देश भारत की जाए तो भारत में नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा आदि न केवल जल का स्रोत है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र भी है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में जल का महत्व और भी अधिक है। सिंचाई, पेयजल, उद्योग और बिजली उत्पादन में जल की अहम भूमिका है। लेकिन आज जल संकट, भूजल का अत्यधिक दोहन और नदियों का प्रदूषण और एक गंभीर समस्या बन चुके हैं। वही भारत के वन जैव विविधता से भरपूर है। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंदरवन और मध्य भारत के वन अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों का घर है। जंगल जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं, वर्षा को प्रभावित करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इसके साथ ही लाखों लोग, विशेषकर आदिवासी समुदायों की आजीविका जंगलों पर निर्भर है। साथ ही यह भी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि भारत के वन जैव विविधता से भरपूर है। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंदरवन और मध्य भारत के वन अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों का घर है। जंगल जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं, वर्षा को प्रभावित करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इसके साथ ही लाखों लोगों, विशेषकर आदिवासी समुदायों की आजीविका जंगल पर निर्भर है। जब बात जंगल जीवन की हो रही है तो हमारा राज्य झारखंड भी प्राकृतिक संसाधनों के से समृद्ध एक राज्य है, जहां जल, जंगल और जीवन का संबंध अत्यंत गहरा और अत्यंत जीवंत रूप से दिखाई देता है। यहाँ के घने वन, बहती नदियाँ और आदिवासी संस्कृति मिलकर एक ऐसा पर्यावरणीय संतुलन बनाते हैं जो न केवल राज्य की पहचान है बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का आधार भी है। झारखंड में अनेक नदियाँ जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, बराकर आदि बहती हैं जो यहाँ के लोगों के जीवन और कृषि का प्रमुख आधार हैं। जल का उपयोग खेती, पीने, पशुपालन और छोटे उद्योगों में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी तालाब, कुएं और झरने जल के मुख्य स्रोत हैं। जल के बिना यहाँ की कृषि और जनजीवन की कल्पना करना कठिन है। झारखंड को वनों की भूमि कहा जाता है। यहाँ शाल, शखुआ, महुआ, तेंदू, बांस जैसे पेड़ों की भरमार है। ये जंगल न केवल पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं बल्कि यहाँ के आदिवासी समुदायों की आजीविका का मुख्य साधन भी हैं। महुआ के फूल, तेंदू पत्ते, लकड़ी और जड़ी बूटियाँ लोगों के जीवनयापन में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। जंगल यहाँ की संस्कृति, परंपरा और त्योहारों से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। झारखंड के आदिवासी समुदाय जल और जंगल को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा मानते हैं। उनकी जीवन शैली प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने पर आधारित होती है। सरहुल, कर्मा जैसे त्यौहार प्रकृति के प्रति उनके सम्मान और आभार को दर्शाते हैं। वे जंगल और जल स्रोतों की रक्षा को अपना कर्तव्य मानते हैं। झारखंड में जल और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं। जंगल वर्षा को आकर्षित करते हैं और नदियां व झरनों को जीवित रखते हैं। वही जल जंगलों को हरा भरा बनाए रखता है। यदि जंगल नष्ट होंगे तो जल स्रोत सूख जाएंगे और इसका सीधा प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ेगा। इस प्रकार यहाँ का जीवन इन दोनों पर निर्भर करता है।
वर्षों में खनन, औद्योगिकरण और वनों की कटाई के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर खतरा बढ़ा है। जल स्रोत

0: प्रदूषित हो रहे हैं और जंगलों का क्षेत्र घट रहा है। इससे पर्यावरण असंतुलन और स्थानीय लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आज के आधुनिक युग में विकास की दौड़ में ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ा दिया है। वनों की अंधाधुंध कटाई, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। इन समस्याओं के कारण न केवल पर्यावरण असंतुलित हो रहा है बल्कि मानव जीवन भी खतरे में पड़ता जा रहा है। संरक्षण के उपाय, जल और जंगल के संरक्षण के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। वर्षा जल संचयन, जल का सीमित उपयोग, वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर रोक और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। संरक्षण के उपाय, जल और जंगल को बचाने के लिए जागरूकता को और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान का उपयोग और सरकारी नीतियों का सही क्रियान्वयन जरूरी है। साथ ही स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही इन संसाधनों की रक्षा संभव है। जल और जंगल के संरक्षण के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। वर्षा जल संचयन, जल का सीमित उपयोग, वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर रोक और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। जंगल और जल के संरक्षण के लिए सरकारी पहल। सरकार ने जल संकट को देखते हुए कई योजनाएं शुरू की, जैसे जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। अटल भूजल योजना के माध्यम से भूजल स्तर को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है और तालाब, कुएं व जलाशयों के पुनर्जीवन पर काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वनों की सुरक्षा के लिए सरकार वन महोत्सव, हरित भारत अभियान, ग्रीन इंडिया मिशन और CAMPA योजना जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं। इन योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है और कटे हुए जंगलों की भरपाई की जाती है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय वन नीति के माध्यम से जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा की जा रही है। सरकार स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे परियोजना और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रही है। स्कूलों और गाँव में पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि लोग स्वयं भी प्रकृति की रक्षा में भाग लें। निष्कर्ष, सरकारें जल, जंगल और जीवन की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन केवल सरकारी योजनाएं ही पर्याप्त नहीं है। जब तक आम जनता इन प्रयासों में सहयोग नहीं करेगी तब तक पूर्ण सफलता संभव नहीं है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह जल बचाए, पेड़ लगाए और पर्यावरण की रक्षा करें। भारत में जल, जंगल और जीवन का संबंध अत्यंत गहरा और अविभाज्य है। इनका संरक्षण ही देश के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। यदि हम इन प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और संरक्षण करेंगे तो ही आने वाली पीढ़ियाँ के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उजाले की ओर के अंतर्गत वार्ता जल जंगल जीवन एक अभिन्न संबंध। वार्ताकार थी पूनम सहाय, शांतिपुरी डाल्टनगंज से।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

सच्ची का बोलबाला फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ किशोर कुमार की थी, गीत लिखा था अमित खन्ना ने और इसकी धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने। अगला गीत आई सुनते हैं हत्या फिल्म से, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार बप्पी लहरी।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम भाग 18 प्रसारित कर रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूँ तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूँ, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज़्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, IT पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था, थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये
2: व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इंप्लीमेंट किए गए हैं। मालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काई वॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ वो स्काई वॉक जा रहा है, मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली टॉप 1-2-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा, कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं।
2: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो USP डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइन एप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो हैं, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
2: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी MSMEs भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, MOUs और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
2: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खास तौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहाँ पर शांति को बरकरार रखने के लिए, और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
2: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एंड इट मीन्स दैट बाय स्ट्रेंथनिंग द फिजिकल connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे, और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
2: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे, और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेस जो बनी है इनका इंप्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट GDP ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल GDP के कॉन्ट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, एंड व्हेन दे डू दैट दे ऑल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी।
1: थैंक यू सो मच सर,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। इंटरव्यूअर इज शिशिर सिन्हा, जर्नलिस्ट।
4: नमस्कार। मोदी गवर्नमेंट इज कंप्लीटिंग 12 इयर्स। ड्यूरिंग दोज 12 इयर्स वी हैव सीन वेरियस अप्स एंड डाउन इन द इंडियन इकॉनमी। we have seen challenges like COVID, we have seen challenges like Russia-Ukraine war, and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco, and it's a pleasure to have you on the show.
5: Thank you very much.
4: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
5: So I think a lot of positives happened, and if I were to say what are the way I would put, sort of contextualize what has happened, you've already given the environment. There were challenges like COVID, external environment is very volatile, there's a challenge of AI coming in. What I think we have achieved is to have a more frictionless economy. There is less friction, and I'll explain what I mean by that. The whole digital payment, Jan Dhan, Jam Trinity, if you really look at it, it has reduced the friction in the economy. Also, the GST, for example, it's a landmark reform. It has ensured that, again, the friction in transaction of goods. If you recall, in the past, trucks would be waiting at state borders for hours. Today, actually, you can reach any part of India, and has reduced logistic costs. I think the first F which they have achieved is to get to more frictionless economy. Second, I think what India has done is to use force multiplier, multiple force multiplier, and I'll give you examples. One is, for example, if you look at the way we have handled the PLI scheme, the defense exports, for example, 33 times from what it was at the beginning. So it's not a small feat to start from where we are and we are 33 times. People don't talk about it. And from a net importer, I think we are also now a good exporter of the defense equipment. Mobile phone, for example, has grown 6 times mobile assembly. Again, of course, aided by PLI scheme. But these schemes were important. They were thought of at various times. And various other elements of reforms were carried through, in my view. For example, the labor codes, the issue related to Bharat Mala Pariyojana, the Sagar Mala Pariyojana for logistics, PM Mudra Yojana, all these were parts of what I would call force multiplier. Add to that what Udaan scheme did for air transport, add to that what Smart City Mission has done to over 7,500 projects have been implemented with an outlay of 1.5 lakh crore. So all these adds up to what I would call the second part of the story, which is force multiplier. The third I would call is a factor social stability. I think while we do all this, if social stability is not there, it is not going to be good for any economy. I think, for example, several elements, PM Kisan Yojana, where almost 4 lakh or 4.1 lakh crore were transferred directly to farmer benefit. PM Awas Yojana, which is fundamentally over 4 crore houses have been sanctioned or constructed. And look at railway, for example, for the common man, Vande Bharat, 164 Vande Bharat services operationalized already, and more coming in the way. And when I say social stability, it also has some business elements to it. For example, insolvency and bankruptcy code actually augurs well because it brings unproductive assets into productive economy, thus creating jobs. So again, that 12 lakh crores of stress debt were resolved. I think in addition to these three broad areas, which I explained, which is frictionless, force multiplier, and social factor stability, there's one key theme the government has done in the last few years, looking at opening India and bringing India to the world and bringing world to India through free trade agreements, through trade integration. And this has certainly opened up new markets for us that has allowed us to be resilient even when there were challenges on many, many fronts.
4: Okay.
5: For example, the India-UAE trade has already crossed 100 billion. Who would have thought UAE we would have 100 billion trade? And the ambitious targets which are being set for the India-UK deal, the India-EU deal, India-Australia deal also has been signed. New Zealand is in the works. In addition to that, I think the biggest of them all, the India-US deal, I think we are all working very hard to...
4: Okay. So you have given a very comprehensive details about the economic activities. And if I just sum up the answer which you have given, all the three F has translated into what we call as the faster growth for the economy. Now coming to one big question, that how India Inc. is confident about making big investment in this fast process of economic growth?
5: So I certainly think if you look at the data which we have for the last 3 years, India Inc. has initially, of course, the investment, a lot of the investment heavy lifting happened from the government side through public investments. But I think the last 3 years, the private investment has certainly picked up. Let me just take an example of steel sector, which I think the largest of the investments are happening in the private sector. I think we are already 220 million ton. And by 2030, we will be 300 million ton. It's a massive investment program underway. So many of these investments have actually been cleared 2-3 years ago, and they're all under implementation. And as you would, if you look at the mobile phone exports, that entire investment has happened in the last 2 years. And we have emerged as the second largest exporter of mobile phones out of this country. From we were, I think, down at 10th or so at some point. Okay. So each one of them, I think we've done a taken leap. When I say taken a leap, it is not only the fact that investment is in place, the investment is at a scale which is very high, which means no longer investing small, we are investing at a larger scale.
4: Mr. Mukundan, when we talk about India Inc. is making investment, as you rightly mentioned, that during last 3 years we have seen good growth and also good numbers. One of the big issue from the India Inc. is about the employability. Whenever you ask for people, are they really good for your sector or are they good for your company or not? Do you see the skilling program which has been introduced by Modi government has been helping you in a big way to getting employable people rather than just the people?
5: I think it's a very important question. I think we can't just say that, you know, we need to get people, we need to get employable people. TII itself, I think, runs about 60-odd model career centers. We are running close to about 12 to 14 of these skilling centers as part of the industry. And what we do focus on is to make sure that the people who come out not only have a degree with them, but also in addition to degree are employable in the shop floor or doing the productive work. And that has come through several schemes of the government, including the scheme in terms of making sure that internship program, which is the new one which the government has introduced, where graduates and people who are about to graduate can come and intern with the company, not to get job, but to get the experience of real work life. And that sort of prepares them to go and join the company much easily. So this has been added on top of what we used to have in the past, which is apprentice training program and several programs. And I fully agree with you that we have to focus in, when I say social factor, social inclusion, we need to focus on employability and skilling. But in addition to that, I want

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। समाचारों के प्रसारण के लिए हम अगला प्रसारण अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम।
1: प्रस्त चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड the historic India-EU free trade agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
7: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था,
0: तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था, हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
4: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए
2: रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में

0: अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI Country Partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
1: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
2: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms, we are using technology at a massive scale for financial

0: साथ भी मीटिंग की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान इकतसादी और तकनीकी तआवुन को और भी मजबूत किया जा सके। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: पेरिस में वीवा टेक 2026 समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने मालियाती शमूलियत, तालीम, हिफ्जान सेहत और ज़राअत जैसे शोबों में भारत की तेज़ रफ्तार डिजिटल कायापलट को उजागर किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब दुनिया के बरवक्त होने वाले डिजिटल लेन देन का तकरीबन आधा हिस्सा यूपीआई से तय पाता है और अब ये फ्रांस में भी दस्तयाब है। इससे कबल दिन में आज जनाब मोदी ने फ्रांस के बड़े सीईओ से मुलाकात की। सेंट गोबेन, मिस्टर लेआए और सीजीएम लीडरों ने भारत की तरक्की के इम्कान में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनू जहानत और सब्ज जहाजरानी के शोबों में ज्यादा सरमायाकारी और शराकतदारी के मंसूबों का ऐलान किया। वजीर आजम इस वक्त एक अजीम शान सकाफती प्रोग्राम बोंजो में शिरकत कर रहे हैं जिसे पेरिस में सॉल पेलेल सेंटर में भारतीय बरादरी ने मुनाकिद किया है। फ्रांस के शहर पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
0: वजारत खारजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के अहम नतीज को उजागर किया। पेरिस में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दौरे के दौरान तीन अहम सुतूनों, तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई नीज बैन अलावामी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने नीस में मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स स्कीम का इफ्तिताह किया जो भारत में टेक्नोलॉजी की महारत वाले स्टार्टअप्स के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इस प्रोग्राम में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने शिरकत की। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आज आला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने इम्तिहान के अमल में सालमियत, शफाफियत और सलाहियत के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मुतालिका अहलकारों को हिदायत दी कि वो निगरानी कायम रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को आजादाना और सिफाना तौर पर मुनाकिद किए जाने के लिए तमाम जरूरी इंतजामात हों। जनाब प्रधान ने कहा कि वजारत की जानिब से नामजद अफराद तमाम रियासतों में तैनात होंगे ताकि वो इम्तिहान से मुतालिक सरगर्मियों से तालमेल कायम रखें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की सदारत में कायम मरकजी कमान सेंटर को रिपोर्ट करें। मीटिंग के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से भी ये कहा गया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उम्मीदवारों को सभी जरूरी सहूलियात मुहैया कराई जाएं जिसमें इम्तिहान में बैठने के मुनासिब इंतजामात और पीने का पानी शामिल है ताकि वो हर किस्म के दबाव से पाक माहौल में इम्तिहान दे सकें। नीट यूजी इम्तिहान 2026 में अब जबकि सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को चाहिए कि पुरसुकून रहें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने पूरे साल सख्त मेहनत की है, लिहाजा अब उन्हें मुनासिब सुकून और इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। एनटीए ने एक महफूज, मुनसिफाना और शफाफ माहौल में इम्तिहान मुनाकिद कराए जाने की यकीन दहानी भी कराई है। वजारत तालीम ने आज बताया कि यूनिवर्सिटी की क्यूएस आलमी दर्जाबंदी 2027 में 52 भारतीय तालीमी इदारे शामिल हैं। भारत की जानिब से सबसे ऊपर के दर्जे में आईआईटी दिल्ली है जो आलमी सतह पर 118वें नंबर पर है, जबकि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास भी दुनिया की बेहतरीन 200 यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आलमी सतह पर भारत के तालीम से मुतालिक नक्शे कदम मुसलसल वसत इख्तियार कर रहे हैं। अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊदी अरब के हज और उमरे की वजारत ने भारत को 2 लब्बैतुम अवार्ड अता किए। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्द ही नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई जायजा मीटिंगों की सदारत की और कोऑपरेटिव बैंकिंग, नामियाती मसनूआत और कोऑपरेटिव बरामदात को मुस्तहकम करने के कौमी लाए अमल का जायजा लिया। कोऑपरेटिव बैंकिंग की बड़ी स्कीमों का जायजा लेने के दौरान जनाब शाह ने टेक्नोलॉजी को इख्तियार करके हुक्मरानी को बेहतर बनाकर और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अदायगी, खिदमात के मुश्तरका प्लेटफॉर्म और खिदमात की फरोख शुदा डिलीवरी के जरिए कोऑपरेटिव बैंकिंग को मुस्तहकम करने की गरज से किए गए मुख्तलिफ इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कॉरपोरेट उमूर की वजारत ने एक बयान में बताया कि आने वाले बरसों में मुजव्वजा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के तआवुन में उसके किरदार के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कोऑपरेटिव बैंकों के लिए सहकार सारथी टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाने वाले इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के सदर मसूद पेसिशकियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाए नए मफाहमत नामे को एक तारीखी दस्तावेज और एक मजबूत ईरान की जानिब से पैगाम दिया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमन सिर्फ बाहमी एहतराम के जरिए हासिल किया जा सकता है और उन्होंने अपने वक़ार, आज़ादी और इलाकाई तआवुन के तहफ्फुज़ के साथ आलमी अमन के तय ईरान के अज़्म की तौसीक की। वर्साय में G7 समिट से अलग फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों के साथ एक इशाइये के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दस्तावेज पर दस्तखत करने से कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि यह समझौता तय पाना आसान नहीं था। दस्तखत किए गए मुआहदे को बाद में तेहरान भेजा गया और फिर सदर पेजिशकियान ने इस पर दस्तखत किए। फ्रांस के सदर इमानुअल मैखो ने इस मुआहदे का ये कहकर खैर मकदम किया कि इससे देरपा अमन और आबनाए हुरमुज के दोबारा खोले जाने के लिए राह हमवार होगी, जिससे आलमी सतह पर तवानाई की कीमत में कमी आने में मदद मिलेगी। यूक्रेन ने मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी पर इस हफ्ते के दौरान दूसरी मर्तबा रातों रात हमला किया। इसके अलावा रूस के रोस्तोव खित्ते में कई मकामात को निशाना बनाया गया है। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने यह कहकर इन हमलों की तस्दीक की कि मॉस्को के जुनूब मशरकी मजाफात में वाकई मॉस्को तेल रिफाइनरी पर कई ड्रोन से हमला किया गया। रूस की वजारत दिफा ने बताया कि मुल्क भर में यूक्रेन के 555 ड्रोन्स को बीच में ही रोककर जाया किया गया। रूस की ट्रांसपोर्ट वजारत ने बताया कि हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से परवाजें रोक दी गईं। रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने कहा है कि मॉस्को पर यह हमला इस बरस के सबसे बड़े हमले में से एक है। इधर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को रूस की जारी फौजी कार्रवाइयों के जवाब में एक काबिले जवाज रद्द अमल करार दिया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की तमाम रिफाइनरीज अपनी आला तरीन गुंजाइश के साथ काम कर रही हैं और उनके पास खातिर ख्वाह खाम तेल दस्तियाब है। साथ ही पेट्रोल और डीजल का मुनासिब जखीरा भी बरकरार रखा गया है। मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के तनाजुर में नई दिल्ली में आज बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,36,00,000 LPG सिलेंडर की बुकिंग मौसूल हुई है, जबकि 1,47,00,000 सिलेंडरों की डिलीवरी दी गई है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि माल्टा के झंडे वाला LNG जहाज दिशा, जिस पर 62,370 मेट्रिक टन LNG है, कल सुबह गुजरात के दहेज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। ये जहाज पीर को आबनाए हुरमुस से निकला था। متحدہ عرب امارات نے ایک بڑے نئے ضابطے کو منظوری دی ہے جس کے تحت سوشل میڈیا کے لیے کم از کم عمر 15 برس طے کی گئی ہے۔ اس بڑے قدم کا مقصد ڈیجیٹل اسپیس میں بچوں کے تحفظ کو مستحکم کرنا ہے۔ شیخ محمد بن راشد المختوم کی صدارت میں متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا۔ اس قرارداد کے تحت 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے اور چلانے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ انہیں انٹریکٹیو فیچرز سے جیسے کسی مواد کو پوسٹ کرنے، اس پر کمنٹ کرنے یا اسے شیئر کرنے یا پبلک گروپوں کو جوائن کرنے تک رسائی حاصل ہوگی۔ 15 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو محدود رسائی حاصل ہوگی، لیکن وہ سخت نگرانی میں ہی رسائی حاصل کر پائیں گے۔ پلیٹ فارمز کو ان ضابطوں پر پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے 12 مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ چین کے گیانگ میں جاری عالمی مکے بازی کپ 2026 میں آج بھارت کی میناکشی ہڈا کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ میناکشی نے خواتین کے 51 کلوگرام زمرے کے 16 پری کوارٹر فائنل مرحلے میں پولینڈ کی نٹالیا کو 5-0 سے شاندار جیت حاصل کی۔ 51 کلوگرام کے خواتین کے زمرے میں میناکشی کا مقابلہ قزاقستان کے الاؤ بالکی بیکووا سے، جبکہ 65 کلوگرام زمرے میں اسنے کا مقابلہ پولینڈ کی کنگ کروکا سے ہوگا۔ کوارٹر فائنل میں 57 کلوگرام زمرے میں پرانچی کا مقابلہ چینی تائپے کی چینگ یو یانگ سے ہوگا۔ 55 کلوگرام کے مردوں کے زمرے میں نکھل کا مقابلہ آذربائیجان کے امین محمد زادہ سے ہوگا۔ خواتین مقابلوں میں 48 کلوگرام زمرے میں جیوتی اور 85 کلوگرام میں جگنو نے پہلے ہی سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا کر بھارت کے لیے تمغے کو یقینی بنا لیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہ صرف اسی صورت میں ہموار ہوتی ہے جب اس کی رسائی سب تک ہو۔ انہوں نے پیرس میں ویور ٹیک سمٹ میں بھارت کی تیز رفتار ڈیجیٹل کایا پلٹ میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے فرانس کے بڑے کاروباری لیڈروں کے ساتھ بھارت میں سرمایہ کاری کے مواقع اور توسیع کے منصوبوں پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اتوار کو ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان 9 دستخط شدہ مفاہمت ناموں کو ایک تاریخی دستاویز قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: اسی گیت کے ساتھ آج کا آپ کے لیے کاریکرم سمپن ہوتا ہے۔ دیجیے سدکشنا کو اجازت۔
4: آج کے فنکار کاریکرم آپ سنیں گے کچھ ہی پلوں کے بعد۔

0: किसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी

गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान।

डांसिंग का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांसिंग के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। डांसिंग खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग की प्रतिभा क्या है।

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दानसिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी.एन. शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही है।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल न जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारेलाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी। और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माई लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

0: चुका है।
1: अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार।

क्रांति फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों की। शब्द रचना संतोष आनंद की थी और इसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आइए सुनते हैं कर्मा फिल्म से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह की। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का गीत तभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सवारा था उषा खन्ना ने। अगला गीत आइए सुनते हैं, दिल एक मंदिर फिल्म से। आवाज़ें आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की अगली पेशकश है खिलौना फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे।

खिलौना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, शब्द रचना नमन बख्शी की थी और इसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दिल जला फिल्म से अभी आपने ये नगमा सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा था इंदीवर ने और संगीत से सवारा था बप्पी लाहिरी ने।

नामुमकिन फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ किशोर कुमार की थी। गीत लिखा था अनजान ने और इसकी तर्ज बनाई थी आर डी बर्मन ने।

ऊंचे लोग फिल्म से अभी आपने ये नगमा सुना। आवाज़ किशोर कुमार की थी, गीतकार थे अनजान और संगीतकार आरडी वर्मन। और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म बॉर्डर से। आवाज़ रूप कुमार राठौड़ की है, शब्द रचना जावेद अख्तर की है और तर्ज अनु मलिक की।

को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन

रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

होंगे अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद। अनुमति दें। जय हिंद।